103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्य

0: मंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

मनुष्य वही है जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने निर्णयों से पहचाना जाता है। मनुष्य की असली पहचान उसके कर्मों से बनती है। हमारे कर्म ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और यही चरित्र हमारी सोच और हमारे विचारों को बनाता है। इंसान की धारणाएं और विचार जिस तरह के होंगे वैसे ही हमारा जीवन भी होगा। इसलिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए अपनी सोच अच्छी और विचारों को उत्तम बनाएं। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी मंगलमयी कामना के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के वंदना कार्यक्रम की।

सृष्टि के आदि से अंत तक वह धरा के कणकण में शिव का ही वास है। शिव ओमकार है, शिव ही इस सृष्टि के निर्माता व संहारक भी है। जो कोई भी सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं वह उन सभी का कल्याण करते हैं।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। 7:10 पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम और हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग आप सुन पाएंगे 7:40 पर। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान सकते हैं सुबह 8:00 समाचार प्रभात में 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। इसके अलावा दिन में 1:00, शाम 5:00, शाम 7:00, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11:00। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आठ बजकर 30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गाने सुहाने और 9:00 सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं सुबह 9:20 पर, सुबह 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। ये समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे हम सुबह 10:00 और 10:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:05 पर आज हम आपको सुनवाएंगे पंजाबी गीतों का प्रोग्राम महक पंजाब दी। 11:30 पर आज आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:00 आप रोजाना सुनते हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम और 12:30 पर आज आप सुनेंगे मिंजरा कार्यक्रम। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का।

हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:10 पर हम आपको सुनवाएंगे संध्याकालीन भजन और 5:30 पर युवा दोस्त सुनेंगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम युवा मंच। छह 6:05 पर सुनिएगा सुरमई सांझ कार्यक्रम और 6:30 पर आनंद लीजिए मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम की। 7:10 पर आज हम आपको सुनवाएंगे किसान वाणी कार्यक्रम। रात्रि 8:00 सुनिएगा सबरस कार्यक्रम और 8:30 पर आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात 9:15 पर होगा एक ही कलाकार कार्यक्रम। रात 9:30 पर आनंद लीजिए गजलों का प्रोग्राम रहेगा रंगे गजल। हिमाचली लोकगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनना न भूलिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से। हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी कर

0: श्री राधा कृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi participated in the India-Australia CEOs Forum in Melbourne this morning and addressed business leaders from both the countries.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a 3-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his 3-nation tour. Centre has approved the procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare said this will ensure better price realisation for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. The approval is based on the proposal submitted by Tamil Nadu. Under the approval, over 87,000 metric tons of copra will be procured in the state. The entire procurement will be undertaken at the minimum support price, or MSP, under the price support scheme. The total MSP value of the approved procurement is over 1,000 crore rupees. The National Testing Agency, NTA, has released Advanced City Intimation Slip for CSIR UGC NET June 2026. The exam will be held on the 17th and 18th of this month. Students are advised to download their slip from the official website www.csirnet.nta.nic.in to know allotted exam city. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has directed tobacco companies to immediately begin procurement operations at the minimum support price to protect farmers' interests and restore their confidence. Reviewing tobacco procurement with officials and traders at the Secretariat in Amravati, the Chief Minister said the price of tobacco should not fall below 200 rupees per kilogram and asked companies to expedite the auction process. India is holding on to its crown as the world's fastest growing major economy, with the International Monetary Fund projecting it to grow at 7% during the current calendar year. IMF's flagship biannual report, the World Economic Outlook Update, projected India's gross domestic product to moderate in the next calendar year to 6.4%. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The two-day 23rd national level

0: सुबह सुहानी।
1: नई उमंगे नई बहारे, खिली खिली सी कलियां और बारिश किए फुहारे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्रोताओं, बने हुए हैं आप इस वक्त 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। जी हाँ, जहाँ पर आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुबह सुहानी का। तो चलिए आपकी इस सुबह को सुहावना सा बनाते हैं गीत संगीत और बातों के मिले जुले से इस संगम से। शुरुआत करेंगे आज इस सुविचार से। दोस्तों, जीवन हमें ये सबक सिखाता है कि एक अगर आपको शांति से जीना है तो दूसरों से शिकायत करने के बजाय आप खुद को ही बदल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरों से उम्मीदें लगाना ही हमारी उदासी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। लेकिन जब हम किसी से अपेक्षाएं रखना बंद कर देते हैं तो हम खुद ब खुद खुश रहना शुरू कर देते हैं।

जी हाँ, अभी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। प्रोग्राम है सुबह सुहानी।

जी हाँ श्रोताओं, सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। प्रोग्राम में पलटते हैं अब इतिहास के पन्नों को, जहाँ छुपी हुई है कुछ ऐसी बातें जो हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है इतिहास में। तो चलिए बात करते हैं ऐसी ही कुछ प्रमुख घटनाओं की जो आज के दिन घटित हुई और इतिहास में दर्ज हो चुकी है। श्रोता आपको बता दें, 9 जुलाई 1816 में अर्जेंटीना को स्पेन से आधिकारिक तौर पर आज़ादी मिली। वहीं सन 1893 में डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स द्वारा अमेरिका में पहली बार बिना एनेस्थीसिया के सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई। 9 जुलाई का दिन भारतीय शेयर बाजार और विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1875 में आज ही के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बात करें 9 जुलाई 1815 की, तो आज के दिन अमेरिका में पहले प्राकृतिक गैस के कुएं की खोज हुई थी। वहीं 1877 में आज ही के दिन सबसे सम्मानित टूर्नामेंट विंबलडन की शुरुआत हुई थी। इस टूर्नामेंट में 21 युवाओं ने भाग लिया था जो इंग्लैंड के अलग अलग इलाकों से आए थे। दोस्तों आपको बता दें कि 9 जुलाई 1991 में सुप्रसिद्ध शायर शेरी भोपाली ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वहीं भारत के प्रख्यात शायर एवं लेखक सरदार अंजुम ने 9 जुलाई 2015 को इस दुनिया से वो रुखसत हुए। बात करते हैं आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध शख्सियतों के बारे में। 9 जुलाई 1819 में जन्म हुआ इलियास होवे का, जिनके द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया। वहीं 9 जुलाई 1938 में जन्म हुआ हिंदी फिल्मा के प्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार का, जिनके बारे में विस्तार से बातें होगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत, और इसके लिए आप

जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, प्यारी प्यारी सी बातें और फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं इस वक्त सुबह सुहानी प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिनेता संजीव कुमार की। जी हाँ दोस्तों, संजीव कुमार हिंदी फिल्म जगत के

जाने माने अभिनेताओं में से एक है। उनका असली नाम हरि भाई जरीवाला था। दोस्तों, ठाकुर का किरदार भला शोले फिल्म के इस अदाकार का कौन ही भूल सकता है। जी हाँ, सभी के जहन में बैठा हुआ है ये किरदार और आज भी इस को जो है वो जीवंत माना गया है। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत, गुजरात में हुआ। दोस्तों, इस महान कलाकार का नाम फिल्म जगत के उन अमर कलाकारों में गिना जाता है जिनके बेमिसाल अभिनय से सजी हुई फिल्मों की रोशनी से बॉलीवुड हमेशा जगमगाता रहेगा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई तरह के रोल प्ले किए, जहां नया दिन नई रात फिल्म में उन्होंने एक साथ 9 रोल प्ले किए, वहीं कोशिश फिल्म में उन्होंने गूंगे बहरे व्यक्ति का शानदार अभिनय किया। दोस्तों, शोले फिल्म में ठाकुर का चरित्र उनके अभिनय से हमेशा के लिए अमर हो गया। आपको बता दें कि फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा उनके श्रेष्ठ अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मात्र 47 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बेशक आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके मधुर व्यवहार और अभिनय के जरिए वो हमेशा ही हमारे दिलों में यूं ही बसते रहेंगे।

सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। और चलिए दोस्तों, अब आपको आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास इन दिनों नया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर है, जहां उनके द्वारा मेलबर्न में अधिकारियों को संबोधित किया गया। वो दोनों देशों के बीच शिक्षा, व्यापार व आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था में कई तरह के और सुधार देखने को मिलने वाले हैं। बात करें खेल जगत की, तो इन दिनों चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में कई तरह के उलटफेर देखने को मिले, जहां पर पूर्व चैंपियन ब्राजील और पुर्तगाल टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वहीं फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड और स्पेन जैसी टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि 10 जुलाई को फ्रांस और मोरक्को के बीच में पहला क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेगा। मौसम का हाल आप सभी को सुनवाएंगे बस कुछ ही पलोंगे, पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोता, चलते चलते जल्दी से आपको मौसम का हाल भी बताते चले। जी हाँ, दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता के चलते आज केरल के तटीय भागों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ के कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में बीती रात से ही बारिश का क्रम लगातार जारी है। बात करें हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ पर मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यानी 13 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश होने का सिलसिला यूं ही जारी रहने की बात की गई है। बात करें ज़िला शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर और सिरमौर की तो यहाँ पर कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। जी हाँ दोस्तों, भारी बारिश के चलते आप सभी अपना ध्यान रखें, नदी नालों के नजदीक ना जाएं और घरों से निकलने से पहले अपने साथ छाता लेकर जरूर निकलें।

0: जी हाँ श्रोताओ, इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कल इस कार्यक्रम को इसी वक्त लेकर फिर से हाजिर होंगे।
1: सुबह सुहानी।
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। श्रोताओ, आज के शुभ भ्याग कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लहरू राम सांख्यान व अक्षर सिंह परमार की आवाज में गाए इस लोक गीत से।

श्रोता, इसी लोकगीत के साथ आज का शुभ ब्याह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ये देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
4: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का

0: श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा

0: इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को संबोधित किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ऑल्सो होल्ड टॉक्स विद हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंथनी अल्बनीज़ी इन मेलबर्न टुडे। Centre approves procurement of copra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
2: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट

0: for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnab Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys' singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। जी हाँ, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम गाने सुहाने। गीत कुछ ऐसे जो आपको ताजगी से भर दे, ले जाए कुछ ऐसे दौर में जहाँ पर आपको किसी की प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी बातें याद आ जाए। जी हाँ, गाने सुहाने में गीत कुछ ऐसे कि जिन्हें गुनगुनाने के बाद आपको एक मीठा सा एहसास होने लगे।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: जी हाँ, गाने सुहाने प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, संगीत सुनना भला किसे पसंद नहीं होता है। संगीत की धुनें दिल से महसूस की जाती है। कभी कभी ये धुनें किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है, जबकि किसी दूसरे के लिए एक याद, एक भावना या फिर एक कहानी बन जाती है। ऐसे ही कुछ प्यारे प्यारे से गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं आज प्रोग्राम गाने सुहाने में।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ दोस्तों, संगीत की सुरीली धुनों को इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने सुहानी प्रोग्राम में। संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती होती ही यही है कि ये हर दिल, हर इंसान के दिल तक एक अलग अंदाज में पहुंचती है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने सुहाने प्रोग्राम।

जी हाँ, बने हुए हैं आप इस वक्त आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। फ्रिक्वेंसी वही आपकी जानी पहचानी सी, जहां आपको एंटरटेन करने के लिए लेकर आते हैं हम कुछ बेहतरीन से प्रोग्राम खास आप सभी के लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं और इस वक्त आप सभी के लिए लेकर आते हैं हम वो खास प्रोग्राम जहां आपसे करते हैं हम कुछ अपने दिल की बात। जी हाँ, बातें कुछ ऐसी जो हमें आपकी ओर करीब लेकर आती है और हम और आप बंध जाते हैं एक ऐसे अटूट रिश्ते में जिसे तोड़ना ना आपके लिए आसान होता है ना हमारे लिए। तो चलिए रिश्तों की इस डोर को और भी मजबूत बनाते हैं और आगाज करते हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि का। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए अपनी फोन कॉल्स के साथ। डायल कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर 01892224391। जिन फिल्मों से गीत सुनने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आज की वो फिल्में हैं बाजीराव मस्तानी, जब तक है जान, बचना ए हसीनो, हैप्पी न्यू ईयर, हेट स्टोरी 4, एयरलिफ्ट, फन्ने खान, लुक्का छुपी और पद्मावत। वेल, इन मूवीज में से अगर आपकी चॉइस का कोई सा भी गीत है तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। प्रोग्राम वही आपका जाना पहचाना सा गीतांजलि। तो चलिए, हमें जो है ना वो आपकी फोन कॉल्स का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन आप जल्दी से डायल कीजिए अपना नंबर और सुनिए अपनी पसंद के गीत एकदम लाइव हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: श्रोता, तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो अपने आप ही बन जाती है जब हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और करते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से हमें कॉल किया है, कृपया अपना परिचय दीजिए।
1: जी, गीतांजलि ने कॉल किया है, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी सिसोदिया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी फरमाइश पर आते, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ये बताइए, किस फिल्म से गीत सुनने के लिए आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: जी, लास्ट में जो आपने बताई थी ना, बाजीराव मस्ताना।
0: जी जी जी
1: हाँ जी, उसका सुनवा दीजिएगा, घूमर वाला गाना।
0: जी, आपको ज़रूर सुनवाएंगे बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना। आप अगर चाहे तो कोई अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, मैं आपका कार्यक्रम मोबाइल ऐप से पर सुन रहा हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है, कैसे
1: और
0: लगते हैं?
1: आपको बताऊँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं कार्यक्रम, आकाशवाणी से जुड़ता रहता हूँ मैं। और अभी हमने हमारे घर के पीछे बगीचा लगा रखा है।
0: जी, बगीचे में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं?
1: जी, अमरूद के हैं, आम के हैं, चीकू के हैं, और अभी जैसे कि बैंगन और ये होते हैं ना सब्जियाँ,
0: जी जी
1: बैंगन, गिलकी, करेला, इन सब के मतलब हमने रोप तैयार करके मतलब उनको लगाया है। तो अभी मतलब महीने 15 दिन में मतलब वो हमें फल भी देने लगेंगे पेड़। तो जैसे कि आपको बताऊं, अमरूद के तो पेड़ पे अभी फल लग चुके हैं
0: जी जी
1: ये, लेकिन जो सब्जियां लगाई है ना, वो करीबन 1 महीने में वो भी पक के तैयार मतलब हमें सब्जियां देने लगेंगी।
0: जी बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप अपने खेतों में ही फलों को भी उगाते हैं और साथ ही साथ सब्जियां भी पैदा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारे सुनने वालों के लिए भी। कृपया आप एक बार फिर से अपनी फरमाइश बता दीजिए, क्योंकि जो आपने घूमर गाना बताया वो पद्मावत फिल्म से है और आप
1: हाँ सॉरी, पद्मावत में है वो गाना।
0: जी पद्मावत फिल्म
1: जी
0: से। चलिए, आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं आपकी चॉइस का ये गीत। आप हमारे कार्यक्रमों को यूं ही सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।

जी हाँ, हमारे बाकी के लिसनर्स भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। उसके लिए आपको डायल करना होगा हमारे स्टूडियो का नंबर 01892224391।

0: जी हाँ श्रोताओ, लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो।
1: हाँ जी मैम, नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया है?
1: मैं महेंद्र सिंह बोरा जी, बुडुक्कर से।
0: जी महेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए किस फिल्म से गीत सुनना चाहेंगे?
1: एक्चुअली मैंने फिल्म के नाम सुने नहीं है।
0: चलिए कोई बात नहीं, हम आपको
1: आप
0: एक बार
1: अपनी पसंद का बता दीजिए मैम।
0: जी जरूर, अपनी पसंद का भी, और अगर आप चाहे तो हम फिल्मों के नाम एक बार फिर से दोहरा भी सकते हैं।
1: जी।
0: और ये बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं टीचर हूँ मैम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं और देश की तरक्की में, और आप युवाओं को तैयार करते हैं।
1: जी मैम।
0: तो चलिए बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म से ये गीत। श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं गीतांजलि प्रोग्राम। आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अपनी फोन कॉल्स के साथ और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। इसके लिए आपको डायल करना होगा स्टूडियो का नंबर 01892224391। जिन फिल्मों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं वो फिल्में हैं जब तक है जान, बचना ए हसीनो, हैप्पी न्यू ईयर, हेट स्टोरी 4, एयरलिफ्ट, फन्ने खान और लुक्का छुप्पी। इन मूवीज में से अगर आपकी चॉइस का गीत है तो जल्दी से डायल कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि प्रोग्राम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल समय होने वाला है प्रादेशिक समाचारों का। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा, और 9:30 से एक बार आप गीतांजलि कार्यक्रम फिर से सुन पाएंगे।

0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कल शिमला आने का कार्यक्रम, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, किसानों का सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता। एचपीएमसी ने रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए कांच की बोतलों की बाय बैक योजना की शुरू। सांसद राजीव भारद्वाज ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों को ठप करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के चलते रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी, मौसम विभाग का आज 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल 10 जुलाई को शिमला आने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति इस दौरान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मकता और संघवाद का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे वंदे मातरम एक यात्रा विषय पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। संगोष्ठी में देश विदेश के इतिहासकार, संवैधानिक विशेषज्ञ, राजनीति शास्त्री, समाजशास्त्री, विधि विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और शोधकर्ता भाग लेंगे। इस संगोष्ठी में हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब की पहाड़ी रियासतों और ओडिशा के एकीकरण समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। इस दौरान जर्मनी, अमेरिका और अन्य देशों के प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी ऑनलाइन और प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार रखेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के मकसद से कृषि विभाग में एक अलग मार्केटिंग विंग की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपने उत्पादों के विपणन में अधिक सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सशक्त हों और खेती समृद्ध बने, इसी मकसद से सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 2,56,870 किसान 44,784.73 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएं, इसी दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। एचपीएमसी ने पर्यावरण संरक्षण और सतत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस्तेमाल की गई वो खाली कांच की बोतलों की रिसाइकिलिंग के लिए बायबैक योजना शुरू की है। इस पहल का मकसद उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं व वितरकों को एचपीएमसी खाली कांच की बोतलों की वापसी के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना से न केवल कांच के कचरे का सही तरीके से निपटान होगा, बल्कि इससे जुड़े सभी लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। योजना के तहत उपभोक्ता को अधिकृत रिटेलर के पास 200 मिलीलीटर प्रत्येक खाली बोतल जमा करवाने पर ₹1 और 600 मिलीलीटर की बोतल पर ₹2 मिलेंगे। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व धार्मिक स्थलों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रचार प्रसार किया जाएगा। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने धर्मशाला में आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए हवाई संपर्क का विस्तार, हेलीपोर्ट व रोपवे परियोजनाओं का निर्माण, जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा जैसे अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
3: प्रयास करना जरूरी, वो हम सब मिलकर कर रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म आगे बढ़े और जो टूरिस्ट बाहर से आता है वो एक अच्छी सुविधा लेके जाए और जो लोग हैं, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनका व्यवसाय, उनकी आमदनी आगे बढ़े, यही हमारा प्रयास है।
2: केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत धर्मशाला के चरान में लगभग 7.5 करोड़ की लागत से आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि इसके संचालन से क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों व लघु उद्यमियों को मिलेगा।
4: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धर्मशाला में आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने चरान क्षेत्र में लगभग 7.50 करोड़ रुपए की लागत से एक

0: अत्याधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मनोरंजन केंद्र का निर्माण किया है। यह परियोजना न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगी। इस आधुनिक परिसर के शुरू होने के बाद चरान और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को खरीदारी, मनोरंजन और दैनिक जरूरतों से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। इससे उन्हें छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए शहर के अन्य हिस्सों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिणाम स्वरूप लोगों के समय और यात्रा खर्च दोनों में कमी आएगी। यह परियोजना केवल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने का भी माध्यम बनेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांसद राजीव भारद्वाज ने राज्य सरकार पर अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। धर्मशाला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन व जनविरोधी निर्णयों का बोलबाला है, जबकि विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों का खुलासा भाजपा तथ्यों व प्रमाणों सहित अपनी चार्जशीट में करेगी ताकि प्रदेश की जनता सरकार की कार्यशैली और कथित भ्रष्टाचार की वास्तविक तस्वीर देख सके। हमीरपुर जिला के नादौन स्थित मिनी सचिवालय परिसर में भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा बलों के वर्तमान व पूर्व सैनिकों और शहीदों के सम्मान में राष्ट्र सम्मान स्थल स्थापित किया गया है। ये स्थल लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना को प्रेरित करने के मकसद से बनाया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: सचिवालय के मुख्य द्वार पर अशोक चिन्ह, तिरंगे झंडे और सैनिक की राइफल और हेलमेट के प्रतीक स्थापित कर वीर जवानों के त्याग, समर्पण और शौर्य को नमन किया गया है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने हमेशा सर्वोच्च समर्पण और बलिदान का परिचय दिया है। इसी भावना को सम्मान देने के लिए ये स्थल विकसित किया गया है ताकि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति वीर सैनिकों के योगदान को याद कर सके। हिमाचल और हमीरपुर को वीर भूमि के रूप में जाना जाता है। ये स्थल न केवल सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान का बनेगा बल्कि युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना को भी प्रेरित करेगा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के विभिन्न ट्रैकिंग रूटों पर ट्रैकर्स के फंसने, लापता होने और दुर्घटनाओं की दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 10 प्रमुख ट्रैकिंग रूटों की पहचान की गई है और आदेशों के अनुसार चिन्हित रूटों पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति या समूह को संबंधित चेकपोस्ट पर व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारतीय सेना द्वारा कांगड़ा और चंबा जिला के युवाओं के लिए आगामी 1 से 14 अगस्त तक धर्मशाला में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने धर्मशाला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए भर्ती रैली के सफल व सुव्यवस्थित आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मॉनसून के मद्देनजर सभी विभागों को तैयारियों को समयबद्ध पूरा करने को कहा ताकि किसी भी चुनौती या आपात स्थिति से निपटा जा सके। राजधानी शिमला व किन्नौर सहित प्रदेश के कुछ भागों में मॉनसून की सक्रियता के चलते रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। विभाग ने आगामी 14 जुलाई तक प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में बनेगा AI विश्वविद्यालय, साइबर सुरक्षा समेत कई कोर्स होंगे। पंजाब केसरी के शब्द हैं, ट्रेनी व जॉब ट्रेनी कर्मचारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण से बाहर होंगे। दिव्य हिमाचल लिखता है, सितंबर में होगी बल्क ड्रग पार्क की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारी करने के निर्देश। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, देश में कुल 7,791 स्कूल बंद हुए, इनमें से 266 हिमाचल प्रदेश के। दैनिक जागरण की एक खबर है, नशा माफिया की डिजिटल नस दबाएगी STF, मोबाइल फोन, UPI, बैंक खाते और डिजिटल वॉलेट की होगी अनिवार्य जांच।

0: मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, प्रदेश में सक्रिय हुआ दक्षिण पश्चिम मॉनसून, अलर्ट जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कल शिमला आने का कार्यक्रम, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, किसानों का सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता। एचपीएमसी ने रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए कांच की बोतलों की बाय बैक योजना की शुरू। सांसद राजीव भारद्वाज ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों को ठप करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के चलते रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी, मौसम विभाग का आज 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि में। श्रोताओ, अभी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपनी फोन कॉल्स के साथ। इसके लिए डायल कीजिए 01892224391। हेलो।
4: हेलो बहन जी, नमस्कार।
3: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहां से कॉल किया है?
4: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
3: जी जगदीश राय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए, क्या हाल चाल है आपके?
4: बहुत मजे में है बहन जी, आनंद में है। आप बताओ बहन जी, कैसे हो?
3: जी हम सब भी अच्छे हैं। और ये बताइए, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और कार्यक्रमों में आए बदलाव आपको किस तरह से लग रहे हैं?
4: बहुत बढ़िया बहन जी, मैं तो इधर पालमपुर में भी आता रहता हूँ, इधर मेरा बेटा रहता है
3: जी,
4: तो हिमाचल में भी मेरा आना जाना रहता है। और कार्यक्रम जो भी है, गीतांजलि या ये फोन इन, जो भी सुनते रहते हैं लगभग।
3: जी बहुत शुक्रिया, और कार्यक्रम में आपने कॉल किया इसके लिए आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं हम ये गीत, आप यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ ऑन इन प्रोग्राम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं अपनी फोन कॉल्स के साथ। हेलो जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
4: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
3: जी योगेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए, आपके हाल चाल कैसे हैं?
4: बढ़िया है, अच्छे हैं।
3: आपके वहाँ का मौसम इन दिनों कैसा बना हुआ है? चलिए, इनका संपर्क जो है वो हमसे टूट चुका है। कोई बात नहीं, अगले कॉलर ज़रूर इस वक्त ट्राई कर रहे होंगे और जल्द से जल्द हमारी उनसे बात होगी। तब तक आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: जी हाँ श्रोताओं, लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जल्दी से हमारे स्टूडियो का नंबर डायल कीजिए और कीजिए हमसे बात। हेलो हेलो,
1: नमस्कार, सुप्रभात
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं रेशमी कटोच गुलेरिया बोल रही हूँ और बड़ी देर से ट्राई कर रही थी, साथ साथ किचन में काम भी कर रही थी।
0: बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई घर पर काम करते हुए हमारे प्रोग्राम्स को सुनता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है।
1: देखो टीवी के लिए तो इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठो
0: जी
1: एंड न्यूज सुनो, आप तो सो मेनी इन्फॉर्मेशन, इतना अच्छा। तो धर्मशाला रेडियो तो एक वेरी गुड टीम और सब हम दिल के बहुत करीब है और हर किसी के हैं
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी हौसला अफजाई के लिए और इतनी तारीफ़ें करने के लिए। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो काम करते हुए, चाहे वो घरों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, या फिर ड्राइव करते हुए कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए रहें और हमें उन्हें यहाँ से बेहतरीन कुछ प्रोग्राम्स सुनवाते रहें।
1: बिल्कुल जी, और टेलर जब गाने सुन के काम करते तो बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं
0: जी,
1: अच्छा खाना बनाती। मींस की रेडियो के साथ आपका मन कहीं और नहीं जाता है, यू आर वेरी पॉजिटिव, खुश मूड रहता है।
0: जी, तो कार्यक्रम में आपने कॉल किया उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम्स को सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।

0: लाइव फोनिंग प्रोग्राम गीतांजलि इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से हमें कॉल किया है?
1: मैं पहले पूछना चाहता हूं कि मेरी बेटी कौन है आज जिसकी मधुर आवाज मेरे को सुनाई दे रही है?
0: जी महेंद्र जी, आज आप बात कर रहे हैं नीमा शर्मा के साथ।
1: नीमा शर्मा जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, बहुत अच्छी, आप बताइए।
1: गीत तो नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ। देखिए, गाने तो हम सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक सुनते ही रहते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो
0: जी, जी। उसमें
1: मधुर मधुर गाने तो आप सुनाते ही रहते हैं
0: जी।
1: लेकिन कभी भी फोन करना हो ना, तो देखिए अपना नाम रेडियो पे नहीं सुनने के लिए करना चाहिए, उस समाज और देश और सबके लिए जो संदेश है ना, उसके लिए जो कोई अच्छा सा संदेश देना जरूरी है
0: जी।
1: और पर्यावरण को संभालने की भी हमको जरूरत है
0: जी। बहुत
1: हमारा जो हिमाचल प्रदेश है बहुत रमणीक है और बहुत बहुत पर्यटन स्थल है इसमें, यहाँ घूमने फिरने के लिए और पर्यटन आ भी रहे हैं पर्यटक
0: जी जी।
1: तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए जब भी जाना है कहीं घूमने के लिए तो पहली बात तो यह है कि जहाँ भी जाना है वहाँ का कोई स्थानीय लोग जो है उसको साथ लेकर जाना है
0: जी,
1: क्योंकि आप तो बाहर से आए हैं तो आपको उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में मालूम नहीं होता है
0: जी जी।
1: तो उसको कोई गाइड ले लें, कोई अपने स्थानीय नागरिक को लेकर के साथ चले, जो भी अच्छे अच्छे स्थल है उसको देखिए। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी जाकर के

0: ये ख्याल रखना है कि इतनी सेल्फी लेने की जरूरत, मतलब कोशिश नहीं करना कि जहाँ हमको जान का खतरा बन जाए।
1: जी जी ये बहुत अच्छी बात
0: है कि, हाँ जी, दूसरी बात यह है कि आजकल पहाड़ों में बारिश बहुत अधिक होती है, हमको मालूम नहीं होता, हम तो नीचे हैं, ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है तो एकदम बाढ़ आ जाती है, तो हमको उसके बारे में मालूम होता है, पानी ऊपर से बह जाता है तो हमको उसके भी जान माल की हानि होने का खतरा होता है। दूसरी ये बात है कि जो हम खाने पीने का जो सामान ले जाते हैं उसको अगर हम वहां पे अपने जो कोई भी खाते पीते हैं सामान उसको अपने झोले में या किसी थैले में डाल करके वापस ले आइए, उस वहां पर गंदगी मत डालिए और पर्यावरण का भी खास ख्याल रखे। दूसरी बात यह है कि आजकल देखिए हमारे पेड़ पौधे जो हैं बहुत कट गए हैं, तो ये एक महीना जो है पूरा वृक्ष लगाने का है जो बहुत बढ़िया है, कहीं भी आपको कहीं भी कोई पौधा मिले या कहीं भी आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है, और अगर पौधा लगा भी देते हैं तो उसके 2-3 साल उसकी देखभाल भी करना जरूरी है, उसको बाड़ लगाना या उसको पानी देना, उसको जंगली जानवरों से या दूसरे जानवरों से भी रखवाली करना है।
1: जी, आपने जितनी भी जानकारी दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, चाहे वो हमारे हिमाचल के लोग हैं या हिमाचल से बाहर से आने वाले जितने भी हमारे श्रोता है या यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो सभी इन बातों को जो अपने जहन में लेकर चले, चाहे वो यहाँ वहाँ घूमने की बात हो, क्योंकि बरसात के दिन है, पानी भी जो है वो नदी नालों में बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फी के चक्कर में कई बार जो है हमें अंदाज़ा नहीं होता कि पानी कितना है, और दूसरी बात जो आपने कूड़ा करकट यहाँ वहाँ फैलाने वाली बात कही, तो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाएंगे तो ही तो आप इस खूबसूरत जगह पर दूसरी बार घूमने के लिए आ सकते हैं ना।
0: वही तो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए पर्यावरण का हमको हर तरह से स्वच्छता और स्वच्छता का हमको ख्याल रखना चाहिए,
1: साफ
0: सुथरा जो भी है वातावरण बना के रखना है, प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है,
1: देखिए
0: हम प्रकृति को संभाल के नहीं रखते, हम प्रकृति को गंदा कर रहे हैं।
1: चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं वो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। फिलहाल आप सभी को सुनवाते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए।
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी लोकेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए कि क्या बात करना चाहेंगे आप और आकाशवाणी धर्मशाला के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे।
1: मैडम जी, जैसे अभी बारिश का दौर चल रहा है, अभी एक हमारे सीनियर श्रोता जो आपके उधर के ही हैं, शिमला के, उनका फोन आया था। वो प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे कि इसको बचाना बहुत जरूरी है।

0: जी
1: आज का जो ये प्रदूषण हो रहे हैं हर जगह, आपने देखा होगा कि वाहन प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गए, वाहन बहुत हो गए हैं, इसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है और यहाँ की प्रकृति को भी मतलब नुकसान हो रहा है। तो
0: जी
1: हमें
0: जी
1: अधिक से अधिक अभी जो बारिश का दौर चल रहा है इसमें पौधों का रोपण करना है और उनकी देखभाल भी करना है ताकि वो आगे उनको बड़े हो, बड़े करना है उनको।
0: जी जी
1: और ऐसा ही मतलब सभी, जैसे भारत के सभी नागरिक हैं, एक एक पौधा भी हर जगह अपने घर के आसपास, कहीं बगीचा है या कहीं आप कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी के वहाँ बगीचे में आप पौधा रोपण करें और एक समूह बनाए, समूह मिलकर करीब 15-20 जनों का समूह बनाए, उस समूह को साथ में लेकर उस कॉलोनी के अंदर में जहाँ जहाँ बगीचे हैं वहाँ पर उसका पौधों का रोपण करें।
0: जी और जो पौधे हमने लगाए हैं ना, वो अपनी जिम्मेदारी समझकर हम उनका ख्याल रखें। वैसे बरसात के दिनों में पानी जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों के दिनों में या फिर सर्दियों के दिनों में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने बरसात के दिनों में पौधे लगाए हैं वो कितने से बढ़ रहे हैं, उन्हें खाद पानी की कितनी ज़रूरत है, तभी हमारे पौधारोपण का जो अभियान है या हमारी जो ये मुहिम है तभी सफल हो पाएगी। कार्यक्रम में
1: जरूर मैडम
0: आपने
1: जी,
0: जी जी जी कार्यक्रम में आपने
1: ध्यान
0: कॉल किया,
1: ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा
0: जी जी उसके लिए
1: जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

जी हाँ श्रोताओ, आज के गीतांजलि प्रोग्राम में बस इतना ही। बस जाते जाते इतना कहना चाहेंगे कि जब इतने प्यारे प्यारे से श्रोता हमसे जुड़ते हैं ना, तो हमारा दिन बन जाता है, क्योंकि आपका हमसे यूँ जुड़ना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपका और हमारा रिश्ता कितना गहरा है। बहरहाल, इस प्रोग्राम को

आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता, और अब से लेकर ठीक 10:30 तक इस कार्यक्रम में हम रहेंगे आपके साथ। तो चलिए गीतों के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म राजा से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक का गाया फिल्म सलामी का ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म खुद्दार से ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। कार्यक्रम के आखिर में आपको फिल्म तलाश का ये गीत सुनवा रहे हैं। इस गीत

इसी गीत के साथ है श्रोताओं, आज का ये गीतों का कारवां यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में आप सभी का स्वागत है। श्रोतों, लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम हिमाचली लोकगीत हिमाचल प्रदेश देवभूमि की लोक संस्कृति, प्रकृति, प्राचीन परंपराओं का एक अनूठा संगम है। यहाँ के रंग बिरंगे परिधान, स्थानीय बोली, मनमोहक संगीत और मेलों में उमड़ने वाली आस्था हिमाचली संस्कृति को बेहद जीवंत बनाती है। यहाँ जो लोक नृत्य संगीत यहाँ के जनजीवन में रचे बसे हैं। नाटी राज्य भर में सबसे लोकप्रिय है और हिमाचल में सबके अपने आप विशिष्ट पारंपरिक नृत्य हैं। त्योहारों और मेलों के दौरान नाटी से सबका मन मोह लेना वाला ये दृश्य देखा गया है। मेलों में नाटी के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े भी खूब गूंजते हैं। तो सुनवाते हैं ये

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
3: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
4: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
3: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ मां और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो।

0: एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कल 10 जुलाई को शिमला आने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति इस दौरान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मता और

0: तैयार उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के मकसद से कृषि विभाग में एक अलग मार्केटिंग विंग की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपने उत्पादों के विपणन में अधिक सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सशक्त हों और खेती समृद्ध बने, यही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 2,56,870 किसान 44,784.73 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। एचपीएमसी ने पर्यावरण संरक्षण और सतत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस्तेमाल की गई वो खाली कांच की बोतलों की रिसाइकलिंग के लिए बाय बैक योजना शुरू की है। इस पहल का मकसद उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं व वितरकों को एचपीएमसी की खाली कांच की बोतलों की वापसी के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना से न केवल कांच के कचरे का सही तरीके से निपटान होगा, बल्कि इससे जुड़े सभी लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। योजना के तहत उपभोक्ता को अधिकृत रिटेलर के पास 200 मिलीलीटर प्रत्येक खाली बोतल जमा करवाने पर ₹1 और 600 मिलीलीटर की बोतल पर ₹2 मिलेंगे। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व धार्मिक स्थलों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रचार प्रसार किया जाएगा। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने धर्मशाला में आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए हवाई संपर्क का विस्तार, हेलीपोर्ट व रोपवे परियोजनाओं का निर्माण, जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा जैसे अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
1: प्रयास करना जरूरी, वो हम सब मिलके कर रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म आगे बढ़े और जो टूरिस्ट बाहर से आता है वो एक अच्छी सुविधा लेके जाए और जो लोग हैं, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनका व्यवसाय, उनकी आमदनी आगे बढ़े, यही हमारा प्रयास है।
0: सांसद राजीव भारद्वाज ने राज्य सरकार पर अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। धर्मशाला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन व जनविरोधी निर्णयों का बोलबाला है, जबकि विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों का खुलासा भाजपा तथ्यों व प्रमाणों सहित अपनी चार्जशीट में करेगी ताकि प्रदेश की जनता सरकार की कार्यशैली और कथित भ्रष्टाचार की वास्तविक तस्वीर देख सके। हमीरपुर जिला के नादौन स्थित मिनी सचिवालय परिसर में भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा बलों के वर्तमान व पूर्व सैनिकों और शहीदों के सम्मान में राष्ट्र सम्मान स्थल स्थापित किया गया है। यह स्थल लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना को प्रेरित करने के मकसद से बनाया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: सचिवालय के मुख्य द्वार पर अशोक चिन्ह, तिरंगे झंडे और सैनिक की राइफल और हेलमेट के प्रतीक स्थापित कर वीर जवानों के त्याग, समर्पण और शौर्य को नमन किया गया है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने हमेशा सर्वोच्च समर्पण और बलिदान का परिचय दिया है। इसी भावना को सम्मान देने के लिए ये स्थल विकसित किया गया है ताकि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति वीर सैनिकों के योगदान को याद कर सके। हिमाचल और हमीरपुर को वीर भूमि के रूप में जाना जाता है। ये स्थल न केवल सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान का प्रतीक बनेगा बल्कि युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना को भी प्रेरित करेगा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: भारतीय सेना द्वारा कांगड़ा और चंबा जिला के युवाओं के लिए आगामी 1 से 14 अगस्त तक धर्मशाला में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने धर्मशाला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए भर्ती रैली के सफल व सुव्यवस्थित आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: मीडियम वेव एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: पंजाबी गीतों के इस कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमरेंद्र गिल की आवाज में।

पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सतिंदर सरताज की आवाज।

गिप्पी गिरेवाल का गाया ये पंजाबी गीत अभी आपने सुना और इसी के साथ पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबुएलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
3: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
2: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
3: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश,

0: जी फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि संकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800044559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर

0: कुछ और भी कविताएं सुनी हैं। यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए।

0: मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
1: अरे भाई, ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
0: जी,
1: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
0: पिताजी, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
1: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
0: जी पिताजी।
1: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
0: ठीक है।
1: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
0: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
1: अरे प्रवाहन।
2: जी पिताजी।
1: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
2: वो पिताजी,
1: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
2: जी वो
1: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
2: पिताजी, हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
3: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
0: हाँ हाँ पिताजी।
2: और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
3: हाँ।
2: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
1: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
2: जी,
1: कल हस्तिनापुर जाना है।
3: पर क्यों पिताजी?
1: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है। इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहां रथों की दौड़ भी होगी।
3: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
0: जी पिताजी,
3: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
1: बहुत अच्छा।
3: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
2: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
3: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
1: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
3: जी पिताजी।
1: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
3: अच्छा पिताजी।
1: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु संन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
2: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
4: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
1: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
2: चल चल, बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
0: और क्या,
2: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
2: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
1: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो। कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
2: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे?
3: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
2: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
3: हाँ।
2: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
1: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है।
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने

0: आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
1: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
1: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
1: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, हाँ, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
1: चलो।
3: अरे वाह, अरे अरे।

0: चलो इसे पकड़ देते हैं।
1: अरे ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
3: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
4: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
4: क्या
2: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
4: हाँ। तो अच्छा हुआ संकट टल गया, अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ।
4: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ।
4: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
5: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत के साथ। इस गीत को गाया है बप्पी लहरी और आशा भोंसले ने।

रिश्तों की डोर बड़ी ही नाजुक होती है और जब बात दिल लगाने की होती है तो फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। चलिए सुनते हैं इसी एहसास को बयां करता एक और खूबसूरत सा गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

एक और खूबसूरत सा गीत सैनिक भाइयों आपके लिए चुनकर लाए हैं। फिल्म का नाम है दूध का कर्ज। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना साप्ताहिक कार्यक्रम मिंजरा।

मिंजरा कार्यक्रम सुनने वाली बहनों जो नमस्ते कने सारे जो राम राम। बहनों स्वस्थ महिला ही परिवार दा एक नींव है, स्वस्थ परिवार कने स्वस्थ समाज दी नींव से जोड़ी की रखती। महिला अपने परिवार दी दिखवाल च इतनी व्यस्त हो जाती है कि से अपने स्वास्थ्य जो भी नज़रअंदाज करेंदी है, पर यह समझना जरूरी है कि अगर से आपू स्वस्थ रहेंगी ताई से अपने परिवार का ध्यान रखी सकती है। तो बहनों भाई अपने समय पर जिड़ी से समय समय पर जांच जेड़े करवाते रहना चाहिए, कने अगर थोड़ी दी तकलीफ आया लगती है तो कने कने इस कने असें खाने का भी ध्यान जेड़ा सा जरूर रखना चाहिए। जियां जियां बहनों उम्र बढ़ती जाती तियां तियां शरीर च कोई ना कोई जेड़ी से कमी आती जाती, इस करी संतुलित कने पौष्टिक आहार जरूर लेना चाहिए, पानी भी पींदे रहना चाहिए।

जाली भी प्यास लगे कन्ने कम्मे दे कन्ने कन्ने रोज़ थोड़ा थोड़ा योगा या व्यायाम भी करते रहना चाहिए। कन्ने नींदर भी बढ़िया होए तो शरीर भी ठीक रहता। कोई शारीरिक समस्या हो जाए तो डॉक्टर वाला जरूर जाना, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। तो बहनों जितना भी मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है उतना शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो बहनों असा सारे वास्ते समय निकालते हैं, पर अपने वास्ते तो हाँ समय नहीं निकालते। कन्ने अपनी गल परिवार कन्ने बहना कन्ने सखी सहेलियों कन्ने जरूर साझा करनी चाहिए। अंदर ही अंदर घुटदे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ताकि असा तनाव तो दूर रही सकन। असंदा स्वास्थ्य असंदी पूंजी है, इस करी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी असंदी ही जिम्मेदारी है अपने परिवार के उज्जवल भविष्य वास्ते। इस करी बोलते स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज। मैं अपने खाने च हरी पत्तेदार सब्जियां मौसमी फल सुखे मेवे जेडे तुसा पचाई सकते न, साबुत अनाज ज्वार जो रागी इसका आटा पिसवाई करी इसकी रोटी जड़ी सै हफ्ते च एक या दो बारी जरूर खाना चाहिए। महिला जो हमेशा आयरन की कैल्शियम की कमी हो जाती है कहीं समय से पहले हड्डियाँ कमजोर होने लग पाउंदियां, फिर लत्तां बाहीं च पिट्ठी च दर्द शुरू हो जाती है। इस करी दूध दही हरी सब्जियां अपने खाने च जरूर शामिल कर लेनी चाहिए। तो बहनों जल्दी उम्र 40 ते पार चली आए ना उपर चली आए तो जांच जड़ी सै जरूर कराते रहने चाहिए ताकि कोई बीमारी बधी ना जाए कने असा मुश्किल विच ना आ जान। तो कार्यक्रम च हुण सुणांदे ने प्यार दिया लोक गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: लोकगीत कने विज्ञापन ते बाद कार्यक्रम मिंजरा च असा फिरी हाजिर रहने कने इस ते पहले जड़ी गल हुआ कर दी थी सहोआ दी थी महिला दे स्वास्थ्य दे प्रति जागरूकता दी। तो बेनु मानसिक रूप ते असा स्वस्थ होन इस वास्ते जरूरी है ध्यान लगाना, यानी कि मेडिटेशन करना, 7-8 घंटे दी नींदर जरूर लेनी चाहिए, कने अपने जड़े शौक न तीना जो भी समय जरूर निकालना चाहिए। कई बहना जो इंटरेस्ट होंदा है कि भई फुलबाड़ी लगाना, फुलां दी दिखवाल करना, तो बहनों ये चीज़ां असां जो तनाव ते दूर रख दियां। कई जो पेड़ पौधे लगाने वधिया लगदे न, सब्जी यानी कि अपना किचन गार्डन बैना जड़ी से लगाई रख दी है ना। कई जो पेंटिंग करना, बुनाई करना बढ़िया लगता है, तो बहनों हर महिला का अपना अपना शौक होंगे है, कने कई जो बाहर घूमना फिरना बढ़िया लगता है। इस करी अपने वास्ते बहनों जरूर समय जड़ा सा निकालना चाहिए। ये समय एक बारी चली गया ना तो सह वापिस दोबारा नहीं आता। तो बहनों हूँ असा तुसा दिखा करते हैं कि महिला लगातार अपने करियर, परिवारिक जिम्मेदारियां, कने व्यक्तिगत जड़ियां इच्छियां होंदियां न, तिना दे विच उलझी रहिंदी है, जिस वजह ते आम तौर पर तिना वाला अपने स्वास्थ्य दी देखभाल करने लई बड़ा घट समय रहिंदा। तो बणो सितंबर महीने दी आखरी बुधवार जो राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य फिटनेस दिवस भारत देश दी महिला दे स्वास्थ्य दी तंदुरुस्ती पर ध्यान देना है, जागरूक करना है, इस वास्ते ये दिन जड़ा सा मनाया जाता, ताकि महिला के सामने आने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों वास्ते सुनिश्चित कदम चुकी सकन, जागरूक होन। कई बहना चिंता अवसाद च रहा कर दियां, जिहड़ियां समाजिक दबाव कम सही तरीके ने ना होने की वजह से कई बीमारियां ते जो लगी पौंदियां। अज बहनों कामकाजी हन, कने कुथी ना कुथी सह बाहर काम भी करा कर दियां, घर दफ्तर बच्चे सारिया जिम्मेदारियां निभा कर दियां, पर अपने वास्ते इन्हां वाला समय ही नहीं है जिहड़ा सह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकन। कने जिहड़ियां बहना घर गृहस्थी संभाल कर दियां, सह खेता पट्टियां दा काम भी सह करा कर दियां, पर सह अपने वास्ते अपनी सेहत वास्ते ध्यान सह बिल्कुल नहीं दिया कर दियां। तो अज महिला जो कई तरह दियां बीमारियां जिहड़ी सह लगी पौ कर दियां, हिरदे रोग, मधुमेह दियां बीमारियां भी लगी पौ कर दियां, तो बहनो अपने वास्ते ज़्यादा समय निकालने लई घरे ते जितने भी सदस्य न तिना जो काम बंडी देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, सारे जो अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए, तो कुसी इक्की आदमी पर गृहस्थी का भार जड़ा सा नहीं पौंदा। तो बहनो महिला अपने खाने पीने पर ध्यान घट रखती है, पहले सारे परिवार जो खाना देना फिर इसे अपने पासे सोचना लगती, तो सब्जी रोटी थोड़ी है घाट है।

इसा गल्ला पर ध्यान नहीं देना। कन्ने बिणो महिला जो आयरन कन्ने कैल्शियम दी कमी रहती है तिसते वे थकान कमजोरी महसूस जड़ी छती ना जो होंगी है कन्ने उम्र बदलने के कन्ने कन्ने बिणो हड्डियाँ भी कमजोर पई जाती हैं। कई बार विटामिन डी की भी जरूरत पौंदी है तो बिणो कोई भी तकलीफ महसूस होए तो अपने टेस्ट कराई लेने चाहिए ताकि बीमारियाँ ज़्यादा ना बधी सकन। अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए महिला जो तो बिणो घरे के काम बाहर की नौकरी के बीच संतुलन भी बनाना कई बार मुश्किल पई जाता है। कन्ने घरे का काम बिना वेतन वाला होंगे मेहनत ज़्यादा आराम घट कन्ने परिवार च अज भी कई अहम फैसले जड़े से पुरुष द्वारा ही लेते जाते हैं कन्ने महिला की सिर्फ सहमति रहती है। तो बिणो संतुलित आहार के कन्ने कन्ने पानी भी खूब पीते रहना चाहिए। बिणो जो अपने जीवन में किशोर अवस्था गर्भावस्था मेनोपॉज के समय विशेष ध्यान देने की जरूरत रहती है तो महिला भी कमां च इतनी व्यस्त रहती है कि भी सह खाना पीना भी जड़ सह भूली जाती हैं। बस ये काम करी लीए सह काम करी लीए फिर आराम करके फिर आराम कन्ने रोटी खाँगे पर सह आराम जड़ा सह बहनों कभी नहीं आता। इं समय जड़ा सा निकलता जाता कन्ने शरीर जो भी आदत पई जाती देरी कन्ने खाने की फिर शरीर च आ जाती कमजोरी कन्ने लगी पौंदियां कई तरह दियां बीमारियां। तो बहनों परिवार के कन्ने कन्ने सौगी सौगी बैठी ने खाना खाई लेना चाहिए कन्ने यही आदत असां जो फायदे वाली भी रहती है। अस अपनी सेहत पासे ध्यान दिंदे रहिंदे ने इकट्ठे जाली परिवार के सदस्य मिली जुली के खाना खाते हैं तो बराबर सब ना जो सा चीज़ मिलती है जिहड़ी सा घरे बनी होंदी है कन्ने हसी मजाक भी चलता रहिंदा एक दूजे वास्ते समय भी असां बड़ा निकल जाता है तो फिरी सेहत भी जिहड़ी सा बहनों ठीक रहती है। तो कार्यक्रम च हुण एक होर लोक गीत सुनाना है तो सुना देने लोक गीत।

लोक गीत दे बाद असा कार्यक्रम च फिरी हाजिर है। ना करिस्ते पहले गल होआ दी थी महिला जो अपने स्वास्थ्य दे प्रति जागरूक होने दी। तो बहनों संगीत असा सारियां वास्ते एक थेरेपी है। थकान होए तनाव होए 10 मिनट अगर असा मदर सुन जिहड़े संगीत सुनदे हन ता मन जिहड़ा सा हल्का हो जांदा, कन्ने नींदर भी वधिया आई जांदी है। कई बारी भैणो राती नींदर ना होए तो अगर तुहां संगीत 10 मिनट सुन गए ता असा ओ पल झपते ही नींदर जिहड़ी सा आई जांदी है। तो भैणों अगर शरीर च किसी भी तरह की अगर कोई भैणों गांठ होए या कोई असामान्य लक्षण असा नज़र आते हो बिना देरी किते जांच जड़ी सै जरूर करवाई लेनी चाहिए। तो भैणों हूँ थोड़ी गल करी लईए अजकल दी यात्रा दी। भैणों अजकल असा पहाड़ां दी चढ़ाई जड़ी सै करा करदे ने, भोलेनाथ दे दर्शन करने लई अगर असा यात्रा पर जा करदे ने तो कुछ गल्लां दा ध्यान जड़ा सै भैणों जरूर रखना। असां दी यात्रा जिहड़ी सै वधिया रहे, ज़्यादा भारी खाना जिहड़ा सै नहीं खाना, कने अपने बला कोई मिठी चीज़ यानी कि टॉफी चॉकलेट जरूर रखी लेनी चाहिए, कने सुखे मेवे भी रखने चाहिए ताकि कल भी असां भूख लगे तो असां खाई सकन। तो भैणों खाना हल्का हल्का ही खाना चाहिए ताकि सेहत यात्रा दे दौरान जिहड़ी सै ठीक रहे। कोई बरसाती या कोई छाता टार्च स्वैटर साल कने आरामदायक जिहड़े सै जूते असां वाला जरूर होना चाहिए। हल्की हल्की सिर दर्द पेट दर्द बुखार की दवाई भी असा वाला जरूर होना चाहिए। यात्रा के दौरान भारी भारी बैग जेड़े से बिल्कुल नहीं लेके जाने भैनों, कने बड़ा बढ़िया हो सके अगर असा हल्के बैग लेके जान तो चढ़ाई के समय असा मुश्किल नहीं होनी। तो भैन जितनी जरूरत होए उतने आरामदायक कपड़े लेके जाना चाहिए, कने यात्रा पैदल होए ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, कन्ने शरीर स्वस्थ होए ता ही जाना, नहीं तो जेडे बाकी दे सदस्य यात्रा पर गए होंगे तिना जो भी परेशानी जड़ी सै तिना जो भी सामना करना पौंदा, एक भी सदस्य कोई भी सदस्य होए तिस विच तिसदा असर बाकियां पर भी पौंदा। अगर कोई एक बीमार हो जांदा तो बणो असा यही बोलना चाहते कि सारे की यात्रा मंगलमय हो, वधिया होए, वधिया दर्शन करी सकन, कोई परेशानी ना होए, कने अपने घरे सही तरीके कने वापस आई जान। कई बार भैनों असा दिखे कि भी यात्रा के बाद कई कई दिन जड़े सह बीमार रेंदे, तिना गलों का भी ध्यान जड़ा सा रखना जरूरी होंगे। जे तू रुकना पोए रुकी आना, आराम आराम कने यात्रा करनी, कने दिखी सुनी कि कुथी रस्ते खराब हैं ता भी तिसा यात्रा पर जड़ा सा ध्यान देना रुकी आना। कने यात्रा ज़्यादा तरफ जड़े सा बरसाती दे महीने च होंदियां, कने इन गलों का ध्यान रखना असें जड़ा सा बड़ा जरूरी होंगे कि कोई नुकसान असें ना हो असें दे परिवार जो ना हो। तो कार्यक्रम च भैणों हुण गल करनी है खान पान की। भैणों चुकंदर सेहत वास्ते जिहड़ा सै वधिया हुंदा, इसका असां जूस सूप या सलाद बनाई के खा सकते हैं। ये खून बधाने का जिहड़ा सै काम भी करदा, कने जिन्हां दा खून घट बनता होए तिना जो चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। पर भैणों असां चुकंदर ता चुकंदर दा जिहड़ा सै चिल्ला भी बनाई के खाई सकदे न, खाने जो ये बड़ा स्वादिष्ट होंदा है, कने इसका रंग रूप भी बड़ा बढ़िया होंदा है। समग्री असा लैनी है बनो, एक कप बेसन लेना, एक मध्यम आकार का चुकंदर लेना, एक छोटा प्याज लेना, कने एक दो हरी मिर्च लेनी, एक छोटा चम्मच अदरक ले लेना, दो तीन बड़े चम्मच हरा धनिया ले लेना, कने आधा छोटा चम्मच जिहड़ी सै हल्दी लेनी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेना, कने आधा चम्मच जो

अजवाइन लैनी, कन्नै नमक जितना स्वाद अनुसार अस खांदे हैं उस हिसाब ले लेना, कन्नै थोड़ा तेल या घी ले लेना, पानी लैना, कन्नै बिना पहले जेह्ड़ा बेसन च हल्दी लाल मिर्च अजवाइन कन्नै नमक मिलाना, फिर इस बिच कद्दूकस कीता चुकंदर प्याज हरी मिर्च अदरक कन्नै हरा धनिया जेह्ड़ा सा पाना, एक चुकंदर जेह्ड़ा सा पहले बधिया धोई करी कद्दूकस करी लैना, फिर बैनो थोड़ा थोड़ा जेह्ड़ा सा पानी पांदे जाना, कन्नै जियां जियां डोसे वास्ते असां घोल बनांदे न या चौलां कन्नै कणका दे जेह्ड़े बबरू असां बनांदे चिल्ले बनांदे न तिन्हां लई जेह्ड़ा असां घोल बनांदे तियां ही सह घोल बनाना है गाढ़ा गाढ़ा, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ता चिल्ले जेह्ड़े से असां दे बधिया नहीं बनते न। फिर तवा गर्म करना, कन्नै हल्का तेल जेह्ड़ा इस बिच लगाना, एक कड़छी या कटोरी कन्नै सह गोल तवे च जेह्ड़ा सह पाना, कन्नै गोल गोल जेह्ड़ा सा आकार देना जो देना हल्के हत्थां कन्नै, किनारे किनारे च थोड़ा थोड़ा तेल लगांदे रहना, फिर हल्की अग्गी से दो तीन मिनट जेह्ड़े से पकाना, कन्नै बैठो फिर पलटी करी दूजे बक्खे भी से सेकी लेना, सुनहरा होने तक से सेकना, कन्नै से कच्चा ना रहे, इ'यां सारे जेह्ड़े बैठो चिल्ले हैं सह बनाई की रखने, कन्नै गर्मा गर्म चिल्ले जेह्ड़े से हरी चटनी दही या टमाटर की चटनी कन्नै से परोसने सारे परिवार के सदस्यों जो, अगर असां चाहें तो इस घोल च थोड़ी देर सूजी या ओट्स का आटा भी असां मिलाई सकते हैं, कन्नै ये चिल्ले जेह्ड़े से बढ़िया बनते, कन्नै कुरकुरे भी बनते सूजी कन्नै ओट्स मिलाने ते, तो बेनो खाने जो भी बड़े स्वाद होंदे न कन्नै पौष्टिक भी होंदे न, असां जाली मर्जी चाहन ता ए जेड़े चुकंदर दे चिल्ले से बनाई सकदे न, कई कि बरसाती दा महीना चले आउंदा, कन्नै इस महीने च जाली बरखा लगदियां ता चाहे कन्नै पकौड़े कन्नै चिल्ले बबरू ए दियां चीज़ां जेड़े खाने जो मन करदा, कन्नै खीर ए चीज़ां जेड़ियां से बरसाती दे महीने च जेड़ियां से बनदियां हैं, कन्नै सारे मिलकर खांदे भी हैं, कन्नै बढ़िया भी लगता है बनो, तो तुसां भी जेड़ी सा तैयारी करी लैनी चुकंदर दा चिल्ला बनाने दी। तो कार्यक्रम च हुण एक होर लोक सुनवाना है तो सुनांदे न प्यारे दिया लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। आपसे कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ा

इंडिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपसे सवाल कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही लिखा है। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म सीआईडी और देव आनंद शकीला। हमने ये भी आपसे सवाल पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि घर से किसी प्रियजन का बिछड़ना या अचानक गुमशुदा हो जाना रात भर जागने को विवश कर देता है। हर एक पल उसकी चिंता बनी रहती है, रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है, मन हर पल बेचैन रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वाकई बहुत ही खूबसूरत आज की इबारत है। आंखें दिल का आईना होती हैं, जो बात हम जबान से नहीं कह पाते वो बातें आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ ऐसे बेमिसाल अदाकार हो चुके हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, गहरा दर्द हो, या फिर बिना कुछ कहे जताया गया प्यार हो। दिलीप साहब, गुरुदत्त जी, अमित जी, मधुबाला, मीना कुमारी ऐसे कलाकार थे जो उपरोक्त कही गई भावनाएँ बिना कुछ बोले ही अपने आँखों से बयां कर देते हैं। वैसे आम जिंदगी में भी कुछ लोगों की आंखें बोलती हैं। कुछ लोग जो झूठ बोलने के आदि होते हैं उनकी आंखें उनकी बातें छुपा लेती हैं। तो अपनी आंखों को पारदर्शी बनाए रखिए। फिलहाल सुनिए अनारकली फिल्म का ये गाना। अब ज़रा बताइए कि इसे लिखा किसने है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज़्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा है कि किसके लिए आप रात भर जागे, बताइए क्या आपके लिए कोई रात भर जागता है?

कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में कुछ, जब ख़ास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज़ होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फ़ोन एक माध्यम है जब आप फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछड़ जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं, कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नज़रिए से एक कहानी बयां करती हैं। दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आंखें इंसान के लिए, वो आंखें जिससे हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इन आंखों की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये अपनी खुशी दुख सबसे पहले व्यक्त करती हैं। इंसान शब्दों से तो बाद में बताता है, पर उससे पहले ये आंखें बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में दो अभिनेताओं के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार प्राण। अभिनय में ये हाथों या शरीर से जितना अभिनय नहीं करते थे, उतना सिर्फ आंखों से अभिनय करते थे। कई बार निर्देशक और कैमरामैन सिर्फ इनके चेहरे का क्लोजअप लेते थे और पूरा सीन सिर्फ इनकी आंखें बयां कर देती थीं। चलिए अब फिर एक जागने वाला गाना है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि बताइए आप किसके लिए कभी जागे, आपके लिए कौन जागरण किया रात भर। फिल्म बहू रानी, गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम लता मंगेशकर की आवाज़।

बहुरानी फिल्म का गाना था लता मंगेशकर, नींद टूटी, और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया सुनील दत्त शकीला और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आँखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी, जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी, इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पाँव के पायल की आवाज़ भी न मालूम पड़े। खैर, एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियाँ हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और वहाँ जाकर घर का खाना खा सकें, और कभी किसी के इंतज़ार में भी जगे और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए। जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतज़ार किया जाता था कि सुबह 6 बजे या 4 बजे ट्रेन आएगी, नींद नहीं आती थी, ऐसा भी होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी 12 गीतों की लिखी इबारत में से चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत शामिल हो गया, क्या बात है। ऐसे बहुत सारे श्रोताओं के गाने शामिल हो रहे हैं और अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसके लिए भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आँखों की महकती खुशबू गुलजार साहब महसूस करते हैं, तो सुनिए ये गाना और ज़रा बताइए कौन है इसमें हीरो हीरोइन। फिल्म घर, संगीतकार राहुल देवर्मन, गीतकार गुलजार, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

घर फिल्म का गाना था। हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेहरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर में उतर जाती है। किन आंखों से आपको डर लगता है ये ज़रा बताइएगा, माँ पिता टीचर पत्नी पति या किसी दोस्त से, मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा। जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली, ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है, तब भी माँ की आंखों में अगर ज़रा भी नाराज़गी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं, जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात, और ये आंखें दिल की जुबा है, और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफ़र कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में, फिर भी इबारत की ओर आँखें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, इन आँखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आँखें ऐसी हैं कि आँखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं, और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोहरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज़ थी, कैफी आज़मी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आँखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुराने फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आँखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ थी, कैफी आज़मी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज़ है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराज़गी और भी बहुत कुछ नज़र आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं पर छुपाती भी बहुत कुछ हैं और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आँखें। इन्हीं आँखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं इन आँखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की चली है तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं, जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का, कभी दुख का। संगीतकार का नाम भी जरा बूझिए।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब, और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया, संगीतकार मदन मोहन, आवाज़ लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आँखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी, 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आँखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आंखों से डर लगता था, ज़रा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आंखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और अपनी और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा की खुला झरोखा हैं, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहां चौदहवीं के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नज़ाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज़ है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आँखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आँखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं, गुलजार के बोल, खयाम का संगीत था। और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आज़मी, राजेश खन्ना पर्दे पर, बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी हैं, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आँखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफ़ी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत, हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है। हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आज़मी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है, और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज़ का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं, फिल्म हंसते जख्म का। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुँचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, गाने की झलक, फिल्म ऊँचे लोग, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर पता है आपको तो बता सकते हैं।

ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों का सफर ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड पर चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भाई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की ढेर सारी टिप्पणियां कैसे शामिल होंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा एक भी गीत शामिल नहीं हुआ, और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे आज तो बहुत सारे गाने शामिल हुए। तो अब देखिए कि बहुत सारे श्रोताओं की पसंद इसमें शामिल थी। और अब सिर्फ इतना बता दें, आज के इस सुरीला सफर का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है गांव और खेत पर। गांव और खेत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर गांव शरीर है तो खेत उसकी आत्मा है। अगर गांव एक गीत है तो खेत उसकी मधुर धुन है। दोनों का संबंध उतना ही गहरा है जितना धरती और आकाश का, नदी और किनारों का, या बीज और वृक्ष का। गांव की पहचान उसके खेतों से होती है और खेतों की जीवंतता गांव के खेतों से। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं धरती के माथे पर स्वर्णिम तिलक लगा रहे हों और दोनों हाथों से अपना सारा चमचमाता सोना धरती पर लुटा रहे हों। ओस की बूंदें पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती हैं और हल्की हल्की चलती ठंडी हवा फसलों के साथ मिलकर एक मधुर राग छेड़ देती है। दूर तक फैली हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी ठंडक भरा सुकून दे जाती है।

के फूल हैं खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं भाई

खेत केवल अन्न उगाने की भूमि भर नहीं होते, वो तो किसान के सपनों की पाठशाला भी होते हैं। हर बीज में एक आशा छिपी होती है, हर अंकुर में एक भविष्य और हर फसल में अनगिनत परिश्रम की कहानियां आकार ले रही होती हैं। किसान जब मिट्टी में बीज डालता है, उस समय वो केवल खेती नहीं करता बल्कि विश्वास बोता है कि समय आने पर ये धरती उसकी मेहनत को फल में बदल देगी। गांव की पगडंडियां खेतों तक पहुंचती हैं और खेतों की मेड़ें जीवन के संघर्ष और सफलता की कथा कहती हैं। बैलों की धीमी चाल, हल्की रेखाएं, फसलों की लहराती बालियां और किसानों के माथे पर चमकता पसीना, ये सभी मिलकर परिश्रम का एक ऐसा महाकाव्य रचते हैं जिसे पढ़ने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती।

ऋतुओं का सबसे सुंदर रूप गांव और खेतों में ही दिखाई देता है। बसंत आता है तो सरसों के पीले फूल धरती को सुनहरा परिधान पहना देते हैं। वर्षा की बूंदें खेतों पर पड़कर जीवन का संगीत रचती हैं। शरद ऋतु में पकती फसलें ऐसे झूमती हैं मानो प्रकृति अपनी सफलता का उत्सव मना रही हो। हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, नया भाव और नई कहानी लेकर आता है। गांव और खेत हमें सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकता समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि श्रम, संतोष और प्रकृति के प्रति सम्मान में समाहित है। ये हमें बताते हैं कि धैर्य, परिश्रम और विश्वास से ही सपने साकार होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दो बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 2:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख

0: उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया।

0: की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
0: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था, रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट।

0: जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: बहारें फिर भी आएंगे, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज़ में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुनिए मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी, की संगीतकार ओपी नैयर।

0: सरकार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है।

0: जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
4: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
3: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 3 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए और व्यापक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है और हमारे संकल्प भी अटूट हैं।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसे शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा। शिमला में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले के तहत नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है ताकि उद्योगपति अपने उद्योगों की स्थापना और संचालन अधिक आसानी से कर सकें। मुख्यमंत्री ने ऊना में विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन का कल 10 जुलाई को शिमला आने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति इस दौरान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मता और संघवाद का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे वंदे मातरम एक यात्रा विषय पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। संगोष्ठी में देश विदेश के इतिहासकार, संवैधानिक विशेषज्ञ, राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री, विधि विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और शोधकर्ता भाग लेंगे।

0: वे वंदे मातरम एक यात्रा विषय पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। संगोष्ठी में देश विदेश के इतिहासकार, संवैधानिक विशेषज्ञ, राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री, विधि विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और शोधकर्ता भाग लेंगे। कार्यक्रमों के तहत करवाए जाने वाले कार्यों का अलग से भुगतान करने का आग्रह किया है।
1: हमारी मांगे हैं कि मानदेय की न्यूनतम राशि 26,000 दे, उसमें स्थायी नीति के दायरे में ले और हमारे से जो नेशनल प्रोग्राम वाले काम करवाए जाते हैं उनका समय पर भुगतान करें। और प्रदेश सरकार से भी एक निवेदन है कि जो बजट सत्र में उन्होंने 1,000 की राशि की बढ़ोतरी की थी वो अभी तक हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर को नहीं मिली है। दुख का विषय है और चिंताजनक भी है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री महोदय जी ने आशा वर्कर को सम्मानित किया था, लेकिन आज वही आशा वर्कर जो है सड़कों पर उतरी।
0: मॉनसून की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 14 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। नगर परिषद परवाणु के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। दोनों पदों के लिए बराबरी की स्थिति बनने पर परिणाम पर्ची प्रणाली के माध्यम से निकाले गए। पर्ची के जरिए भाजपा के ठाकुर दास अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि कांग्रेस के मोहन लाल उपाध्यक्ष चुने गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं ऊना जिला की चिट्ठी। लेखक हैं राजेश शर्मा, वाचिका है राजकुमारी चंदेल।
3: जुलाई माह के आरंभ से ही ऊना जिले में लगातार हो रही वर्षा ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत प्रदान की है। अच्छी बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है, जिससे किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। जिले में मक्की के अलावा बेलदार सब्जियां, दलहनी फसलें, अरबी तथा हल्दी की बुआई भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि समय पर हुई वर्षा से इस वर्ष फसल उत्पादन बेहतर रहेगा और कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं। उपायुक्त जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 30 सितंबर तक जिले में निजी विकास व निर्माण कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के पहाड़ी कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का मानना है कि अनियोजित पहाड़ी कटान और निर्माण गतिविधियां भूसंरचना को कमजोर कर सकती हैं, जिससे भूस्खलन, भवनों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचने के साथ साथ जनधन की हानि का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी क्रम में खनन विभाग ने भी 31 दिसंबर तक स्वां नदी तथा उसकी सहायक खड्डों में खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं गोविंद सागर झील और अन्य जिले के जलाशयों में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए मछली पकड़ने पर भी रोक लगाई गई है। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र ने मॉनसून के दौरान भूमि कटाव, जल भराव और बाढ़ जैसी संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है तथा सभी विभागों को सतर्क रहकर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हरोली उपमंडल की ग्राम पंचायत खड्ड में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ऊना द्वारा 12 दिवसीय फास्ट फूड कुकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना और उन्हें व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को निःशुल्क भोजन, अध्ययन सामग्री और वर्दी उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रशिक्षण पूरा होने पर सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण व विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। नशा मुक्त समाज के निर्माण और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में भी जिला प्रशासन सक्रिय है। राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल की जिला स्तरीय समिति की बैठक में सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विद्यालय स्तर पर नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने, संवेदनशील पंचायतों में विशेष बैठकों का आयोजन करने तथा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया गया। शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में भी ऊना जिला सराहनीय

0: पहल कर रहा है। जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में समर स्कूल रेडीनेस मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करना तथा उनके प्रारंभिक सीखने के कौशल को विकसित करना है। अभिभावकों को बच्चों के प्रारंभिक विकास, घर पर सीखने के अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा बच्चों की बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक तैयारी में परिवार की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी ऊना जिले में अनेक संस्थानों और सामाजिक संगठनों द्वारा योग शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बताया गया। प्रतिभागियों को नियमित योगाभ्यास के माध्यम से अनुशासित, स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। योग के क्षेत्र में ऊना जिले को एक और बड़ी उपलब्धि तब मिली जब बाथू गांव की प्रतिभाशाली खिलाड़ी अनिका राणा ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिला, प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। 79 देशों के 522 प्रतिभागियों के बीच ये उपलब्धि जिले के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। इसी के साथ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे ऊना जिला की चिट्ठी। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: सोनाली कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में,
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलें, परेशानियाँ, हालात बहुत दिक्कतों भरे देखे उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लू कम्बा गाँव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
0: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है ये नृत्य है इसे सिखाएंगे। खुशी की बात यह है कि वे

0: मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्पा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनके भाषा में, उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे।
0: जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आज़ाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
1: जोगथी नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफ़ी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगथी नर्तकी लेट कर केवल मुँह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
1: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
0: वो आगे कहती है इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
1: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष स्थान का संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
0: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगथी नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
1: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फ़ोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान, प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
0: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
1: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
0: जी
1: एक पद्मश्री तक पहुंच गई, यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत, सुमधुर गीत
1: सुनते हैं। गीत

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना, चल सकता है ना ऐसा?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वे मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
0: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें।
1: हाँ हाँ,
0: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने

0: पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है। डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपये उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हज़ार रुपए इकट्ठे कर लिए,
1: तो इसलिए हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है
0: या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
1: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों के को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताज़ा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है।
0: आजकल तो बहुत अलग अलग डिज़ाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
1: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे बिल्कुल सही, आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा के उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
0: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप टिप सरोवर भरा है, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
0: बिल्कुल सही कहा, 1-1 रुपये जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
1: और दीपा, ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज़ तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतज़ार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
0: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था, हमें घरौंदा में जो भुना अना

0: अनाज मिठाइयों से भरते थे, वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे
1: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था।
0: और देखो, हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
1: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है, जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
0: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है। तो एक अंतराल के बाद हम
1: फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ़ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते हैं गीत।

0: भाई हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपये लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें, और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचा कर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नज़र सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो
0: है।
1: पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं, पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे

0: कैसे
1: कैसे कर रहे हैं।
0: एक और... साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से हमारा, सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
1: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती हैं कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी। यदि जिद की भी जाती तो भली भांति समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूँगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था। ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना।
1: आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूट जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
0: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनसे, इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ, बचपन

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुँच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुँच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज़ कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्यौहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत
0: ऐसी भी शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर के घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली,

0: हमारे एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज़ बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जाँच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमे भाप को हटाने के लिए भी डीफॉगर ऑन करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
0: जी,
1: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं
0: तो अभी भी ये, जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं, फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते। जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना।
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत ज़रूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज़ आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गांव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। सुनते हैं खुददार फिल्म का ये गाना।
2: तुम

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा बहुत बढ़िया, बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान में, तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह है।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो यह बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल अच्छी होती है।
0: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, ओके रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरा दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्य प्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी।
0: जी सत्य प्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी।
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? हाँ। और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ, सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है।
0: हाँ।
1: तो वो एक तरह से

0: कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो है। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
0: अच्छा,
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी अब थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, और ये भी बताइए आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक है, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ, सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है, तो वो एक तरह से सही।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी। तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे

0: करवा रखा है और बेस्ट पानी कब से नहीं है, पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उस साइड ज्यादा सूखा होता है।
1: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आस पास क्या कुछ है पर्यटन?
0: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा की जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
1: वाह।
0: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
1: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
0: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
1: जी हाँ,
0: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
1: और मुकेश के गाने?
0: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा,
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है। क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता, भगवान हमें खुद देखते हैं। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दिखे।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं।

0: अरे तूने किसको याद किया, ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा थ्योरिकली, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ, पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना?
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह है ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ की कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी,
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हुई है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना, कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही है, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एचएच बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: भरा नमस्कार
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो हेलो फरमाइश सुनने वाले वो प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है मुंबई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोल है तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैम.
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ.
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना. तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं. त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को.
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है. कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना.
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है.
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल. और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए.
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है असम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है. तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए.
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ. ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए. ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा.
0: जी जी जी.
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी.
0: जी बिल्कुल, देखने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल.
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर. देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या.
0: तो ये शक्तिपीठ है.
1: बिल्कुल.
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू. वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी.
1: और तो, उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन. तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए. तो
1: जी जी.
0: तो

0: ये फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरू सुल्तानपुरी जी,
0: जी गीतकार
1: संगीत तैयार किया है जी,
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज टू से अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। दो तीन दिन पहले तो बहुत गर्मी थी,
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा

0: आरती होती है शाम को, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
0: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
1: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वही बगल में सारनाथ है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रही है कि अशोक स्तंभ में राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में,
0: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है, तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: अरे वाह क्या बात।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो,
0: तो गा के सुनाई गनवा।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
1: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर गिरा बदला, ए आर रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
0: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
1: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
0: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
1: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
0: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
1: जी जी, बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है, याद है क्या आपको?
0: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका गेरा रे बरेली के बाजार में।
1: और बरेली की और कोई खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
0: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
1: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
0: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
1: जरी का काम करते हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते, क्या बनाते हैं?
0: मैम जी हम सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
1: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर?
0: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की
1: शादियों में।
0: हाँ मैम जी
1: बताए, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288।

0: 2288 दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662 मुंबई का STD कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में श्री मोदी ने सिडनी में प्रवासी भारतीयों से हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि वे मेलबर्न के लोगों से भी बातचीत करने के लिए उत्सुक थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपये के विशाल निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की 4थी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस दौरान मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, खाद्य

सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, शिक्षा, खेल, व्यापार, वीजा और संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शुएब बरयलाई ने की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया।

0: प्लब 4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी भजन।

गोपी फिल्म से आपने ये भजन सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। अगला भजन आपको सुनवा रहे हैं हेमलता का गाया हुआ, आवाज़ है, माफ़ कीजिएगा, फिल्म है दुल्हन वही चुपिया मन भाए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन, या आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

0: युवा साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युवा मंच में। यह दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विज्ञान जगत की और साथ में कुछ लेकर आए हैं रोजगार समाचार। और दोस्तों, आज सभी आप जानते हैं कि आज का युग जो है वो विज्ञान का युग है और विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, अंतरिक्ष और पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। और विज्ञान की नई खोजें और आधुनिक तकनीकें हमारे जीवन के हर दिन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक जो है वो बना रही हैं। और इसी वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लेकर आए हैं विज्ञान और तकनीक की दुनिया की ताज़ा व रोचक जानकारियां। और आज के इस अंक में हम जानेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान की नई उपलब्धियों के बारे में, कृषि में आधुनिक तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर भी आज चर्चा करेंगे और साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ भी आपको अवगत करवाएंगे। तो आइए जिज्ञासा और ज्ञान की इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत करते हैं और बने रहिए हमारे साथ विज्ञान जगत की जानकारियों के साथ और विज्ञान की नई सोच उज्जवल भविष्य की ओर एक सार्थक कदम के साथ। तो दोस्तों, कार्यक्रम में जानकारियां हम आपके साथ बहुत सी साझा करेंगे, लेकिन पहले शामिल करते हैं एक प्यारा सा गीत और उससे पहले ये संदेश।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा, परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, तो इस खूबसूरत से गीत के बाद हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, गगनयान मिशन भारत का महत्वाकांक्षी जो गगनयान मिशन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2026 में इसके पहले मानव रहित उड़ान मिशन की तैयारियां जो है वो तेज़ हो गई हैं और इस मिशन के लिए मानव रेटेड LVM3 रॉकेट का एकीकरण शुरू हो चुका है और ये मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि दिलाने वाला

दम भी माना जा रहा है। आगे बात करते हैं, भारत का सौर मिशन आदित्य L1 लगातार सूर्य का अध्ययन कर रहा है और मिशन ने सौर विस्फोट और सौर गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो भी जुटा लिए हैं, जो अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी पर उसके प्रभाव को समझने में वैज्ञानिकों की मदद कर रहे हैं।

200 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दूरस्थ आकाश गंगाओं और ब्रह्मांडीय टक्करों से बनी नई संरचनाओं की अद्भुत तस्वीरें भी भेजी हैं और इन खोजों से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिल रही है। और दोस्तों, भारत ने कृषि के क्षेत्र में तेज़ी से आधुनिक तकनीकें जो है वो अपना रहा है और आज किसान ड्रोन की सहायता से फसलों पर उर्वरक और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव कर रहे हैं, जिससे समय, पानी और लागत तीनों की बचत हो रही है। और इसके साथ ही स्मार्ट सेंसर, मिट्टी परीक्षण तकनीक, GPS आधारित खेती और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किसानों को सही समय पर बुवाई, सिंचाई और कटाई के निर्णय लेने में भी मदद कर रही है। और साथ ही आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग से उत्पादन जो है वो और भी बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर संरक्षण जो है वो हो रहा है। और आने वाले वर्षों में रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, सटीक कृषि और जलवायु स्मार्ट कृषि जैसी तकनीकों का उपयोग जो है वो उत्पादन को और भी बढ़ाने के लिए जो है वो काम में आने वाला है और इन नवाचारों से उत्पादन क्षमता जो है वो और भी बढ़ेगी और पानी और ऊर्जा की बचत होगी और साथ ही पर्यावरण पर खेती का प्रभाव है जो वो भी कम हो जाएगा। दोस्तों, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच के साथ भारतीय कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और किसानों के लिए नए अवसरों का निर्माण भी कर रही है। तो दोस्तों, कुछ और जानकारियों के साथ हाजिर होंगे कुछ ही देर में। इससे पहले सुनते हैं एक और संदेश और उसके बाद एक और प्यारा सा गीत शामिल करते हैं कार्यक्रम में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी दोस्तों, कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत है हमारे सुनने वालों का और हमारे युवा साथियों का। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोजगार समाचारों की। तो दोस्तों, रोजगार समाचारों में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने उच्च शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर के हैं उनके लिए भर्ती जो है उसके लिए विज्ञापन जारी किया है और भर्ती में लगभग 21 विषय जो हैं वो शामिल हैं और इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं वो 15 अगस्त 2026 तक जो हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शिमला द्वारा स्टाफ नर्स के बैच वाइज 71 पद जो हैं वो भरे जा रहे हैं और योग्य अभ्यर्थियों के नाम जो हैं वो संबंधित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही भेजे जाएंगे और सामान्य

क्षेत्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2026 है और जनजातीय क्षेत्रों के लिए 30 जुलाई 2026 है। और इसके साथ ही आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज के तहत 26 पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों और राज्यों के तहत जो सहकारी बैंकों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो कि स्नातक पास हैं और 3 वर्ष का जो नियमित सेवा उनके पास अनुभव है, वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 9 जुलाई 2026 यानी आज से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट HPPSC ORA पोर्टल पर जो है वो विजिट कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं।

और रोज़गार समाचारों में कुछ और जानकारियां आपको देना चाहेंगे कि ये जो जानकारी है वो भर्ती रैली से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, धर्मशाला में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 1 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है और भारतीय सेना द्वारा आयोजित ये रैली मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों के युवाओं के लिए देश सेवा का एक सुनहरा अवसर है। इस रैली का आयोजन जो है वो सिंथेटिक ग्राउंड धर्मशाला में किया जाएगा और इस रैली के लिए लक्षित क्षेत्र जो है वो जिला कांगड़ा और जिला चंबा के पात्र युवा होंगे और भर्ती रैली को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए प्रशासन द्वारा जो है भरपूर इंतजाम किए जाएंगे और रैली ग्राउंड पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो है वो चिकित्सा और एम्बुलेंस जो है वो हमेशा के लिए तैनात रहेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। तो यदि आप भी देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं और भर्ती रैली में शामिल होकर आप जो है वो देश सेवा जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के रोजगार समाचारों में बस इतना ही और अब अपने युवा साथियों से लेते हैं विदा, क्योंकि जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं वो कह रही हैं कि कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त होने वाला है। तो चलते चलते अपने युवा साथियों को यही कहना चाहेंगे कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और सुनते रहें आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। और चलते चलते सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

आप सुन रही थी कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर सुनिएगा किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम मौजां कराएं दिया, जिसमें विषय रहेगा बरसात के मौसम में बेलदार पौधों की देखभाल। और किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी जाएगी। रात्रि 8:00 सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह पर फिल्म आए कुछ गीत आपको सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीत व लोक गीत। और 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम रंगे गजल। सभा के अंत में 10:30 पर आपको सुनवाएंगे कुछ पुरानी फिल्मी नगमे। और कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। और आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी जानकारी आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:58 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कल प्रस्तावित शिमला दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया है। वे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आयोजित होने वाली वंदे मातरम की यात्रा पर स्थायी प्रदर्शनी और सरदार पटेल का विजन अखंडता, एकजुटता और संघवाद संगोष्ठी का अब वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार जनता की सोच को धरातल पर उतार रही है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना में अपने अधिकारों की मजबूती से पैरवी की, जिससे हिमाचल के हितों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से हिमाचल को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए आय होगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में भाजपा

0: उन्होंने कहा कि 3.5 वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर एक भी आरोप नहीं है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। आज शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी अवैध खनन की शिकायतें आती हैं, वहां संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाती है। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि सितंबर माह तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
1: लीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश के जिस मर्जी कोने में होगी, सब एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट है चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस लीगल माइनिंग में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे सत्ता दल का कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में मुहिम चलाई गई है जिसमें चाहे वो सिरमौर जिला है, चाहे सोलन जिला है, चाहे ऊना जिला है, चाहे नूरपुर जिला है, 2 महीने जुलाई और अगस्त में माइनिंग बंद कर दिया। सितंबर के महीने में जाकर के जो है अब माइनिंग खुलेगी।
0: कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि कांगड़ा जिला के ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र किसानों की आय बढ़ाने का आधार बनेगा। वे आज धर्मशाला में इस संयंत्र के निर्माण कार्य व आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान परियोजना की वर्तमान प्रगति, निर्धारित समय सीमा और आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि परियोजना की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है ताकि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें।
2: ढगवार का मिल्क प्लांट है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग जो थी हमने रखी है और जो भी हमारे ऑफिसर्स आईवान हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शंस करके जो टाइमलाइन हमने इस प्रोजेक्ट की एक्सीक्यूशन दी है उसके ऊपर चर्चा की गई है। जो हमने एक टाइमलाइन इनको दिया है कि इसको आपने प्रोजेक्ट को जो है एक्सीक्यूट करना है और जो बेसिक अमेनिटीज हैं जिसमें ज्यादा करके पानी है, बिजली है और सिविल वर्क, इसको बड़ी जल्दी पूरा करना है।
0: समग्र शिक्षा अभियान के तहत सिरमौर जिला के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आज जिला स्तरीय सोशल ऑडिट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश विश्वविद्यालय की विशेष टीम ने जिले के 1,459 स्कूलों में से चयनित 300 स्कूलों के प्रतिनिधियों से संवाद कर स्कूलों में मौजूद आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। सिरमौर जिला प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधियों से मिले सुझावों के आधार पर आगामी कार्य योजना तैयार की जाएगी।
3: जिला सिरमौर में समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो भी हमारे स्कूलों में कार्यक्रम चलते हैं उसके लिए आज सोशल ऑडिट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एक टीम यहां पर आई है और इसमें सोशल ऑडिट के अंतर्गत एक तरह से जन सुनवाई का कार्यक्रम है। इसमें हमारे जिला के 1459 कुल पाठशालाएं हैं, उसमें से 300 स्कूलों का चयन इन लोगों ने किया है। ये जो 300 स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए हैं और जिनका डाटा हम शेयर कर रहे हैं, हम तीनों जो शिक्षा उपनिदेशक हैं अलग से अपनी तीनों एक बैठक भी करेंगे और इनसे डाटा भी ले लेंगे और इन स्कूलों का हम अलग से देख लेंगे कि स्कूल में क्या कमी है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।

श्रोताओ, कार्यक्रम सुरमई सांझ का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म है मर्यादा और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। तो दोस्तों, जब सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है कि मानो आसमां से फरिश्ते गा रहे हों। तो आइए महसूस करते हैं उस रूहानी जादू को।

जी हाँ श्रोताओं, पुराने गानों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उनके शब्दों में जान होती थी और धुनों में रूह। और जहाँ पर आनंद बख्शी साहब की कलम चलती थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या फिर कल्याण जी आनंद जी की धुनें बजती थी, तो वहाँ पर फिर इतिहास बन जाता था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कर्तव्य से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जी हाँ दोस्तों, पुराने गीतों की तो बात ही निराली है, और वो सदाबहार नगमे जो आज भी हमारे दिलों को सुकून देते हैं। जब जुल्फों के साए में कोई पुराना गीत बजता है तो लगता है कि जैसे बीता हुआ ज़माना फिर से लौट आया है। तो आइए पुराने गीतों के उस सुनहरे दौर में एक छोटा सा सफ़र करते हैं, और अगला गीत सुनते हैं महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म है एक दिल दो दीवाने।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: पहले आंख लड़ाइए, फिर आगे बढ़ जाइए, बढ़कर हाथ मिलाइए, अपना नाम बताइए, पहलू

है तो मरेगी, एक रोज मोहब्बत करेगी। अब डरती है रुसवाई से, फिर भागेगी तन्हाई से। पकड़ेगी पल्ला इश्क का, जालिम है हल्ला इश्क का। जो इसमें फिल्म में आएगी तो क्या वो बच के जाएगी।

श्रोता मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म ये ज़िंदगी कितनी हसीन है, और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था रवि ने। तो दोस्तों, इस ठंडी हवा और रिमझिम बौछारों के बीच और इन पुराने गीतों और खूबसूरत लटों के बीच आज की ये शाम जो है वो वाकई ही यादगार बन गई है, और लगता है जैसे कुदरत ने हमारे साथ जो है इसमें अपने रंग भी घोल दिए हैं। तो चलते चलते सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

यहाँ हम यहाँ सलाम लो सलाम लो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियाँ लई करी हाजिर हन मैं ग्राम सेवक कने मेरे कने नमस्त्रैणी जी। ग्राम सेवक दी तरफ ते सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई भैणा जो सारे श्रोत्यां जो राम राम कने नमस्त्रैणी जी तुहानू भी राम राम।
1: राम राम ग्राम सेवक जी कने सारे ही सुनने वाले किसान कने बागवान साथियें जो खास करके साड़ियाँ किसान भैणा जो संजा दी बेला दी राम राम
0: जी।
1: दिखा ग्राम सेवक जी साड़ियाँ किसान भैणा जड़ी है ना से इस बेले चुल्ली दे कम्मे लगी होंदियाँ कई रोटियां बनाई लई होंदियाँ कने कई बना दी होंदियाँ कन्ने कन्ने से जड़ी से बच्चियां जो भी पढ़ा दी होंदियाँ कन्ने कन्ने तिना आकाशवाणी धर्मशाला भी लाया होंदा।
0: बिल्कुल कने दिखा साड़ा कार्यक्रम सुना करदे होंदे सारे ही।
1: बिल्कुल जी।
0: और तिना ये लगदा कि भई आज पता नहीं इना कह दी जानकारी देनी है कौन कौन लोक गीत सुनाने ने है ना
1: जी।
0: कने पूरा आनंद लेंदे
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम
1: जी
0: सुनने दा।
1: साड़ा भी यही प्रयास रहता कि अहाँ जड़ी से खरियां कने छेड़ छेड़ बदिया नित नोइया जानकारियां तिना ताई लियोन कने नोए नोए लोक गीत जड़े इनसे तिना जो सुनान।
0: जी तो दिखा जानकारियां दा सिलसिला जड़ा है सह अहां शुरू करना है।
1: बिल्कुल
0: और
1: जी।
0: आज दी जड़ी साड़ी गलबात है सह है बरसात दे मौसम च असा जो कुण कुण जड़ी साग सब्जियां बेलदार सब्जियां जड़ी हैं सह लगाना चाहिदियां
1: बिल्कुल जी।
0: कने क्या तरीका जड़ा है सह तिना दा होना चाहिदा है।
1: जी सब तो पहली गल तो यह है कि बरसात का मौसम जड़ा है सह सब तो वधिया हुंदा हाँ कोई भी साग सब्जी लगानी हो तिदे ताई गलांदे भी तिस च ना हाँ चलते चलते भी कोई बूटा लगाएंगे ना तो तिनी भी जरूर जड़ा सह उगी आना है पर
0: बिल्कुल
1: जिन्ना आसान तिस चो उगाना है तितना ही आसान जड़ा है तिस चो संभालना भी है क्योंकि सांजो तिस च मुश्किल क्या होंगी कि जालू सह सब्जियाँ बेलदार सब्जियाँ जड़ियाँ सह जमीना दे संपर्क च आउंदियाँ तिसने छोंदियाँ तो क्या होंगे कि तिस च सड़ने की संभावना भी जड़ी है सह उतनी बधी आती।
0: जी। थोड़ा गलाने का मतलब मास्टरानी जी ये है कि भई दिखा जालू भी साड़ी कोई बेलदार सब्जी हाँ बेलदार बूटा कोई लगाते हैं
1: बिल्कुल
0: है
1: जी।
0: ना चाहे सह कद्दू है करेला है घिया है लौकी है ना
1: भावें
0: खीरा है
1: टमाटर ही
0: कोई
1: है
0: भी
1: ना
0: है
1: जी।
0: ता जालू हाँ ये बेलदार सब्जियां लगाई थी तो तेना ये जड़ा ऐसा थोड़ा छम्मण थोड़ा जड़ा ऐसा तेना ये सारा है ना
1: बिल्कुल
0: कोई
1: जी
0: ऐसे सोठी दा या कोई त्रंगड़ ऐसे लगाना चाहिए थे सी
1: कि
0: जिस
1: जिन्हां च
0: ते
1: सह अखे
0: आहा
1: वखे जिहियां
0: बिल्कुल
1: हाड़े हत्थे दियां उंगलियां होंदियां ना
0: जी
1: मन्ना
0: जी जी
1: हत्थ सह इक डंडा होई गया कने उंगलियां जड़ियां होई गईयां पे सह अखे वखे दा सहारा तिस बेला जो बदने होई गया। कई बारी दिखा साढ़े बूटे भी कितने समझदार होंदे हाड़ियां बेला जड़ियां होंदियां ना तिन्हां जो कोई सहारा ना मिले होए सह दीवारां ने या खिड़कियां ने ना इक अपनी ना इक लता जो ऐसा बधा दी है ना सब भी बेचारियां
0: बिल्कुल
1: सहारा ले लैंदियां दिखा तिन्हां जो भी पता कि हाँ जड़ा ऐसा उपरे वो बधना है कने कियां जड़ा ऐसा अपनी बदवार जड़ी ऐसे करनी है।
0: जी। और इसते कने कने ही जड़ा ऐसा है एक गल होर मिस्ट्रैनी जी दिखा जालू अहाँ अपनी कोई साग सब्जी लगाते हैं कोई बेलदार चाहे सह बेलदार होए चाहे सह अहाँ जमीन पर लगाने वाली कोई सब्जी होए भिंडी होए है ना
1: जी
0: ता भिंडी शिमला मिर्च मिर्च ये भी अजकल खेतों च लगाए न
1: बिल्कुल जी।
0: ता इन्हें सारे की जड़ा ऐसा है अहाँ देखभाल की अजकल बड़ी जड़ा ऐसा ज़्यादा जरूरत रही।
1: बिल्कुल ग्राम सेवक जी दिखा अजकल छलियां भी जड़ियां सह बाहियां होंदियां
0: जी
1: तो इं ना हो कि सह कबल्ला पानी खड़ोई आए कने बाद सह डंडे हत्थे होन कने छलियां जड़ियां सह बिल्कुल ना मिलन तो हर चीज़ का हाँ जो ध्यान रखना जरूरी है ये भी दिखना जरूरी है। कई बारी खूब आंधी जी चला दी या वा तो चला ही तइया ना हो सह तिस कन्ने ही बेल झुली के थले पई आए कने हाँ 2 दिन खेतरा च ना जा तो सह दे कम नहीं कमाने हैं प्यागा संजा हाँ खेतरा च 2 टाइम जरूर जाना है टाइम जरूर कढ़ना है।
0: जी। और दिखा जियां कि हुण अहां अजकल गल करा दे भी बरसात दे मौसम च साड़ी साग सब्जियां या जो भी पौधा अहां लगांदे सह
1: जी
0: तां इकदम लगी जांदा
1: जी
0: लेकिन इस दे कन्ने कन्ने जिहड़ा ऐसा है और भी घाह और भी कई खरपतवार जिहड़े ऐसा इकदम निकले आंदे
1: बिल्कुल जी
0: जिहड़े जे
1: बिल्कुल
0: साड़ी फसलां है जिहड़ा ऐसा बड़ा एक अड़ी करी जांदे एक नुकसान करी जांदे है
1: जी
0: ना।
1: दिखा बिल्कुल ठीक गल गला दे कि सह साड़ी फसलों की बदवार जो रोकते हैं दिखा जालू भी कोई अहाँ तिस दे ताई कोई खाद पाते हैं कुछ भी है तो सह तिस च जड़ी है सह कमी लियांदे हैं तो अहाँ इस गल्ला दा ध्यान जरूर रखना है कि साड़ी पौधे की बदवार च जड़ा ऐसा कोई भी कमी नहीं होना चाहिए।
0: जी। और खरपतवार जड़े ऐसा जे भी लगे हो ना तिना यो समय समय पर जड़ा ऐसा निकालते रहना चाहिए
1: बिल्कुल
0: ताजे साड़ा पौधा जड़ा फसल का पौधा जड़ा ऐसा ठीक बढ़वार।

0: खड़ी सकै कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा उत्पादन ऐ सै ठीक होई सकै, है ना।
1: बिल्कुल जी,
0: तां एह तां साढ़ी गल्लबात ऐ, अहां गल्लबात जो जारी रखना ऐ, लेकिन इक प्यारे दे लोकगीत दा जेह्ड़ा ऐसा समय होआ करदा ऐ, तां सुनदे ने प्यारा देआ लोकगीत।
1: जी।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी बड़ा छेड़ तो जो हाँ जड़ा से लोग गीत सुनाया कने फिर यहाँ गलबात करनी है कि जी अहाँ करा दे कि बरसात सांजो जड़ी हैं से क्या क्या मुश्किल आई सकती हैं। तो हाँ जरूर दिखना है कि साड़ी कोई बेल टूटी तो नहीं गई हुई है या फिर पानी ज़्यादा तो नहीं खड़ोती है। कन्ने कन्ने अहाँ ये भी जरूर दिखना है कि ज़्यादा पानी है कन्ने साड़ियाँ जड़ा जड़ी हैं से सड़ी तो नहीं चली हैं या कोई फफूंदी वाले रोग जड़े हैं तिसने तो नहीं फैला दे। कने कन्ने कन्ने अहाँ जड़ा बांसा दा या तारे दा सहारा जरूर देना है। कने साफ सुथरे फल जड़े इंसान जो ताई मिलने हैं सब्जियां जे हाँ इन गल्लां दा ध्यान रखगे।
4: जी मस्टरानी जी, तो हाँ बिल्कुल ठीक गला दे के भी देखा जी हाँ अपने बाल बच्चों का ध्यान रखते ना।
3: बिल्कुल जी।
4: उसी तरह सो अपने पेड़ पौद्या का अपने फल सब्जियां का जड़ा ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए। और देखा बरसात के मौसम च क्या होंगे कि जलू ज़्यादा बरखा पी जाती ना तो एकदम पानी जड़ा ऐसा कुछ भाहे ज़्यादा हो जाता कुछ भाहे घट रही जाता।
3: बिल्कुल।
4: तो खेतर के जिस भाहे पानी की ढाल हो ना तो तीस भाहे हांजो चले पाई आना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: पानी की निकासी जी ऐसा पूरे खेतर से बहर करी देना चाहिए यानी कि नालियां तक जड़े से चले पाना चाहिए।
3: बिल्कुल जी, इस गल्ला का भी ध्यान जरूर रखना कि कुछ की पीड़े पत्ते तो नहीं हुई हो कीड़े तो नहीं लगी हो। कने दिखा जिथू हवा खरी चलती है उतू बीमारियों का खतरा भी काफ़ी जड़ा ऐसा घटी आता क्योंकि कई जगह क्या होंगे ना ऐसा जगह होंगे ना ग्राम सेवक जी,
4: जी
3: पानी तो रुकना ही रुकना पर कन्ने जड़ी ऐसा धुप भी नहीं पौंदी तो बरसात जड़ा ऐसा उस ज़्यादा काम खराब कर दी। कई बार क्या होंगे कि अहाँ चले होंगे तो हाड़े पैरों ने ऐसे ऐसे गड्ढे बनी आते कि तिथू भी पानी जड़ा ऐसा रुकता चली जाता। तो अहाँ जलू चलना है तो सह भी चीज़ों का ध्यान जड़ा ऐसा हाँ जरूर रखना है। कने दिखा लाल कद्दू या बीटल ते फफूंदी वाले रोग जड़े हैं सै कोई फल मक्खी हो गई या फिर खेते च होर जड़ी समस्या दिखी है तो हाँ अहाँ जड़े ने अपने कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विभाग के माहिर की सलाह लेके दवाइये का इस्तेमाल जड़ा सै करना है।
4: जी, जी बिल्कुल तो ठीक गलाया क्योंकि बरसात च क्या होंगे कि अगर अहाँ कोई जिया खरपतवार नाशक दवाइया का इस्तेमाल करते भी हैं तो सभी सो जैसे मौसम के हिसाब ने करना पौधा है ना। कहीं कि क्या होंगे कि अगर अहम सह कोई खरपतवार नियंत्रण की कोई दवाई जी असें अपने खेत छिड़की है
3: थोड़ी देर बरखा हुई है तो सड़ा दवाइये का पैसा भी गया कने जरा इस दवाइये का प्रयोग करके अहम फायदा चुकना चाहते थे सह भी सो नहीं मिलता। तो जलू भी अहम प्रयोग करना है तो अहम मौसम की जानकारी जरूर रखनी है कि अज बरखा होनी है कि नहीं होनी है। कने दूजी गल अहाँ हवा का रुख भी जरूर दिखना है इं ना हो कि जलू तेज हवा चली हो सै पानी तो बूटे हो दुआ पर है हाड़े भरी पई आ दी उड़ी के तह तू चली आ दी। अहाँ अपन आखी जो भी जरूर टक्की के रखना है हत्थों च भी जड़े दस्ताने वगैरह जरूर पहनी के ये काम करना है।
4: जी बिल्कुल तो हाँ ठीक लाया मस्टरानी जी कि दिखा बड़ी सावधानी की जरूरत रही है अगर हाँ कोई भी कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं कोई खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो इस दवाइया का प्रयोग करते वक्त जड़ा ऐसा सांझो बड़ी सावधानियां रखना पौंदियां
3: ना। बिल्कुल जी।
4: और एक खास गल ये भी है कि जलू भी अहाँ कोई दवाई का इस्तेमाल करना है तो इस पर जड़ा ऐसा है तिस दे निर्माण की तिथि या फिर तिस दे
3: खत्म होने की
4: तिथि जड़ी ऐसा भी जरूर पढ़ी लैनी है ना।
3: बिल्कुल जी बिल्कुल।
4: और तिस च एक

0: बड़ा ही सावधानी बड़ा जेड़ा एक प्रपत्र पिया होंदा कि
1: जी
0: क्या क्या गल्लां जेड़ियां से ध्यान रखने वालियां ने, तां सभी जरूर पढ़ना चाहिदा है ना।
1: जी ग्राम सेवक जी, इं नहीं करना कि हुण दवाई दा बोतलों खत्म होई है तो जित्थों मर्जी पाछा दे दिता, सह
0: जी
1: काम नहीं करना। दिखा साढ़े कई बार क्या करते, सह अखे वखे जड़ी है कुल्ला चली जाए तिना सटींदे, कने बच्चों की पहुँच ते जरूर ये दवाइया जड़ियाँ सह दूर रखनिया, तिना कुल्ला च भी नहीं पानी है, क्योंकि सह क्या हों कि साढ़े डंगर बच्छू भी कई बार तिना का पानी पीया दे होंगे। कोई भी ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटना चाहिए, इस हर एक गल का हाँ ध्यान जरूर रखना है।
0: जी कने हुण ध्यान रखना है मिस्टर रैणी जी, अहाँ अपने श्रोतियां दा,
1: बिल्कुल जी
0: अपने जेड़े साढ़े ट्याले पर दिखा इतने सारे सदस्य, इतने सारे लोग आए हो ना,
1: जी
0: इन्हां दी जेड़ी सह मन इच्छा दा भी अहाँ ध्यान रखना है ना,
1: जी
0: इन्हां दा जेड़ा ऐसा मन करा दा कि भई प्यारा दे लोक गीत सुनवाया जाए।
1: जी

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: दिखा बड़ा ही छैड़ा हाँ जड़ा है लोक गीत सुनिया कने उना हाँ फिर चलना है गलबात की तरफ। दिखा ये पेड़ पौधे जड़े हैं साढ़े जीवन ताई बड़े ही ज़्यादा जरूरी हैं। सो हर एक अपने साहे ताई जड़ी है सह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ी भी हाँ छड़दे हैं सह पेड़ पौधे लेंदे हैं कने जड़ी ऑक्सीजन सो चाहिए होंगी सह पेड़ पौद्या ही मिलती है। तो इन्हों का साढ़े जीवन च कितना महत्वपूर्ण योगदान है सह तो हर कोई जड़ा बचपन च ही अपने जड़े सह स्कूले च पढ़ी लैंदा पर इस चो सो जड़ा सह अपनाना भी जरूर चाहिए।
4: जी बिल्कुल मिस्टर रैनी जी, तुहां ठीक गला दे, मैं थोड़ा इशारा समझी आ कि भाई दिखा हुण जड़ा ऐसा बरसात का मौसम शुरू है और जियां कि तुहां पहले भी गलाया था कि अजकल अगर अहां चलते चलते भी कोई पौधा जड़ा ऐसा मिट्टी च लगाइंदे ने तां सै अपनी बढ़बार जड़ी ऐसा पकड़ी लैंदा है, अपनी जड़ जड़ी ऐसा पकड़ी लैंदा है और सै बड़े अच्छे समय पर जड़ा ऐसा तैयार हो सकता है। तो इस गल्ला जो साकार करने ताईं जड़ा ऐसा असां जो चाहिए कि इस बरसात दे मौसम च एक संकल्प लईए कि अहां खूब पेड़ पौधे लगाइए।
3: जी दिखा साड़ा हिमाचल जेड़ा है सै उइयां भी हरियाली दे नाए ते जानिया जांदा। बाहर कई ऐसियां जगह ने जिथों सानूं दूरे दूरे तक जेड़े ने सै रुख दिखणे ओह नहीं मिलदे ग्राम सेवक जी,
4: जी।
3: है ना, तो साड़ा हिमाचल एक इतना अच्छा है जिथों साफ हवा, साफ पानी, साफ वातावरण कने दिखा टियाले की तो गल ही होर है। दिखा सामने धौलाधार जड़ियां तिसदियां पहाड़ियां ने, बर्फ पौदी मजे ने, बरखा होदी। दिखा साढ़े धर्मशाला च सब तो ज़्यादा बरखा होंदी है, आ इसका फायदा जड़ा है सै चाहे गर्मी होए, सर्दी होए, बरसात होए, पेड़ पौधे अगर अहां इत्थों लगान तो इत्थों सै जरूर उगदे हैं, तो सानूं जड़ा है इन्हां का फायदा जरूर लेना चाहिए।
4: जी कने एक गल और इस विच जोड़ने वाली है मिस्टर रैनी जी कि दिखा कई बारी असा सोचते कि भाई साढ़े हाल तो जमीन ही नहीं है, पौधे कुत्थों लगाने ना।
3: जी
4: तो दिखा पेड़ पौधे तो हाँ कुछ भी लगाई सकते, किसी सरकारी भूमि च भी लगाई सकते है ना
3: जी।
4: और इसकी देखभाल करी सकते, इस विच कोई वन विभाग या कोई भी सरकार जड़ा ऐसा तो जो मना नहीं करना ते ना कि भाई तो हाँ इत्थों पेड़ पौधे कई लगाए ना।
3: बिल्कुल जी, चाहे कोई पार्क है, बच्चों का पार्क है तो हाँ तिथु लाई दिया, कोई जियां होर स्मारक वगैरह होंगे बने हो दिखा पेड़ लगाने हो तो कोई भी मना नहीं करता, उल्टा सारे ही बोलते कि ज़्यादा तो ज़्यादा वृक्ष जड़े हैं सह लगा कने हवा जो स्वच्छ बना कने अपने देश जो हरा भरा बना।
4: जी तो इस गलबात जो इतनी अहां विराम देनी है कने एक प्यारा दिया लोक गीत जड़ा है सुनना है।
3: जी

0: जी बड़ा ही छेड़े लोक गीत था कने दिखा रब करे कि साढ़े कांगड़े दे किसान ना दे खेत जिहड़े ने हमेशा हरियाले रहन बेलां कने फलां ने भरोए रहन कने तिना दी मेहनत तो तिना जो भरपूर लाभ मिले
1: जी कने इस कने ही जिहड़ा है साडे कार्यक्रम दा समय इत्थों ही समाप्त करदा है जाने ते पहले दस दीजिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया और कार्यक्रम प्रस्तुति जितेंद्र पाल सिंह।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।

0: जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्ची में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today outlined a powerful roadmap for a future-ready and developed India, driven by the mantra "Grow More, Achieve More." Addressing the Indian diaspora in Melbourne, Mr. Modi highlighted India's economic and technological progress.
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है "Grow More, Achieve More." हम 140 करोड़ एस्पिरेशन

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुना करते सारे ही किसान कने बागवान साथी हैं जो संजय दी बेला दी मास्टर नी दी राम राम कने दिखा इस वेले मेरे कने हैं टियाड़े पर ग्राम सेवक जी तुहानू भी मेरी संजय दी बेला दी राम राम
1: जी राम राम मास्टरानी जी तुहानू भी राम राम कने सुनने वाले सारे श्रोतियां जो किसान बागवान भाई बहना जो सारे जो ग्राम सेवक दी राम राम
0: जी
1: कने

0: दिखा एक बारी फिरी हाजिर होई चुके न असा टियाले पर ढेर सारी जानकारियां मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोकगीत ले करी
1: जी
0: कही कि दिखा जालू हाँ टियाले पर बैठे थे ता साढ़े जड़े गांव वासी थे लोग थे सह टियाले पर थोड़ी घट संख्या थे
1: जी
0: लेकिन जिया जिया जड़ा ऐसे सांझ लगी होना ता साढ़े थके आ रहे किसान भाई बंधु ग्राम वासी जड़े ऐसे टियाले पर आई के अपनी थकान जड़ी ऐसे दूर करने ताई आंदे न और मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोकगीत भी सुनते हैं जानकारियां भी लेंदे न।
1: जी
0: ता आज जड़ा ऐसा मिला जुला मौसम था है ना
1: जी
0: एक तड़ाक जड़ा ऐसा बरखा का भी पई आ संझा दे वेले
1: जी
0: कने दिन भर जड़ा ऐसा मौसम खरा था साढ़े किसान भाइयों ने खेती बाड़ी च भी अपने काम करी ले।
1: कने किसान भैन दिखा कई बार क्या होंगे ना ग्राम सेवक जी
0: जी
1: घरे च भी कुछ सुकाना होंगे या तिस जो सहेजना होंगे डब्बे च पैक करना होंगे तो तिस च भी जड़ी है थोड़ी थोड़ी धुप्प लगती रहे तो असें नमी जड़ी है नहीं बनती कने चीज जड़ी है खराब नहीं होंगी
0: जी
1: तो तिस गल्ला दा मौका भी जड़ा से मिली आंदा कने धुप्पा दा फायदा भी जरूर लेना चाहिदा बरखा दा फायदा भी लेना चाहिदा दिखा हर मौसम च सांझो जड़ा ऐसा पानी भी जरूरी है
0: जी
1: अगर
0: बिल्कुल
1: पानी ना हो तो दिखा हाँ अपने धाना दी फसल जड़ी ऐसा कियां लैनी तो
0: ठीक
1: दिखा
0: बोली
1: हर कोई जड़ा ऐसा पानी दी भी उम्मीद करदा गर्मी ज़्यादा थी हुई तो पानी भी कुत्ते लेना था पर दिखा कई बार क्या होंगे ना कि इतनी ज़्यादा बरखा होंगी या फिर कोई ज़्यादा ओले पई आते तूफान आई जाता आंधी तूफान इतना चलता कि साड़ी फसल जड़ी है सै खराब हो जाती दिखा साले की जड़ी मेहनत की होंगी सै हत्थे नहीं लगती तो साढ़े किसान भाई जड़े हैं सै निराश हो जाते किसान भैन भी निराश हो जाए सै सोचते कि हाँ इतनी मेहनत की हुई कने आखिर च साढ़े कन्ने क्या होया तो इसते ताई क्या है कि साड़ी सरकार ने जड़ी है एक योजना बनाई हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो इस क्या होंगे कि अगर अहाँ समय रेंदे अपनिया फसलों का बीमा कराया हो तो हाँ जो इसते जड़ा ऐसा फायदा मिली सकदा
0: बिल्कुल साढ़ा जड़ा भी नुकसान होंदा
1: जी
0: प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी साड़ी फसलों का जड़ा नुकसान होंदा तो इसकी भरपाई जड़ी ऐसा बीमा कंपनी करती है। और ये भी है कि दिखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जड़ा ऐसा लाभ अगर तुहां लेंदे न तो इस विच जड़ा ऐसा प्रीमियम है सै किसानों ते बिल्कुल नाममात्र दा लिता जांदा कने अद्धा प्रीमियम जड़ा ऐसा सरकार वहन करदी कने अद्धा केंद्र सरकार अद्धा राज्य सरकार और जड़ा ऐसा बिल्कुल घट घट ते घट जड़ा ऐसा प्रीमियम किसानों जो देना पौंदा।
1: बिल्कुल जी दिखा जालू भी साड़ा किसान जड़ा ऐसा बीज बांधा तो वो इस आसा ने अपनी धरती माता जो उस बीज जो दिंदा है उसके हवाले करता है कि चाहे हुण कुछ भी होगा कि मेरी फसल अच्छी होनी है पर दिखा मौसम जड़ा ऐसा कालू बदली आए कालू सै कुंजे हाँ जो अपना रूप दसी दे सो कुछ भी पता नहीं होंदा कने मेहनत करने करने जड़ा ऐसा फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी बिल्कुल जरूरी है दिखा अहाँ अपना बीमा भी कराते सो पता है कि सो जी है अपने ताई भी जी है पैसों की अगर अहाँ बीमार पी जाते दिखा आयुष्मान कार्ड हिम केयर कार्ड बना दे तो सह साड़ा एक किस्म का यही है ना कि सो
0: स्वास्थ्य
1: भी
0: बीमा ही
1: स्वास्थ्य दे
0: है
1: है ना
0: जी
1: तो तीए सो जो फसल अहाँ बांधते हैं तो इसका भी बीमा करवाना बड़ा जरूरी
0: जी
1: है
0: मस्टरानी जी एक गल इतों और भी जोड़ना चाहेंगे
1: जी
0: कि दिखा हाँ अपनी सिर्फ फसलों का ही बीमा नहीं करवाई सकते बल्कि जड़ी साड़ी बागवानी फसलों ने
1: जी
0: फलदार पौद्या के जड़े भी हैं है ना
1: जी
0: तो अहाँ तिना का भी जड़ा ऐसा बीमा करवाई सकते।
1: जी
0: और ये सारा जड़ा ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जड़ा ऐसा इसका लाभ साढ़े किसान बागवान भाई भैन जो मिलता है। और दिखा जी अगर तुहां ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं
1: जी
0: या फिर तुहां इस दे बारे च होर कुछ जानना चाहते हैं तो एक तो अजकल दिखा इंटरनेट का जमाना है
1: बिल्कुल
0: मोबाइलों
1: जी
0: का जमाना है ना
1: जी
0: तो मोबाइलों से कुछ भी जानकारी जड़ी ऐसे ले सकते हैं।
1: जी
0: और फिर भी कुछ एक किसान भाई बंधु जड़े सह बड़ा फोन स्मार्टफोन नहीं रखे थे ना तो सह साड़ा किसान कॉल सेंटर का नंबर है ना 1551 तो इस पर भी जड़ा ऐसा फोन करके हर जानकारी ले सकते। इसके अलावा साड़ा जड़ा नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र ने या कृषि प्रसार अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पर बैठे हो
1: जी
0: अहाँ तिना ते भी जड़ा ऐसा ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਦੇ।
1: ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਦੇਖਾ ਗਰਾਏ 'ਚ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਾਏ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਹਾਂ ਵਧੀ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੋ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ
0: ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ
1: ਜੀ।
0: ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦਸਮਾਏ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿਆ ਲੋਕ ਗੀਤ
1: ਜੀ।

0: कितनी मिठास थी लोकगीतें च।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। कन्नै संझा दे बेल्ले दिक्खा साढ़े जेह्ड़े खेतरां च कम्म कीते होंदे ना किसान भैणां कन्नै भाऊं, अजकल्ल जेह्ड़ी ऊर ला दे होंदे ना सारी थकान जेह्ड़ी है तिन्हां दी हटी आंदी
0: जी
1: जे गीत जेह्ड़े हैन लोक गीत शैल शैल लग्गन
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी।
0: कन्नै दिक्खा साढ़े किसान भाई बड़ी मेहनत करदे न, बड़ी उन्नति करदे न, कुछ तरक्की भी करी जंदे न,
1: जी
0: तां कुछ एक किसान भाई जेह्ड़े से अच्छा अनुभव रखदे न, साढ़े किसान जेह्ड़े से बड़ा बांका कम्म करदे न खेतीबाड़ी च, तां अहां तिन्हां दी गल्लबात जेह्ड़ी ऐ से लेके आउंदे न, कन्नै बाकी किसानां तक पुजांदे न, तां
1: जी
0: इसी कड़ी च हुण जेहड़ा ऐसा समय और दा जानकारी दा तां सुनदे न एह गल्लबात।
1: जी
2: राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नाम दसा।
3: सपना देवी।
2: सपना देवी।
3: हाँ जी।
2: जी तो तुहां दे ग्राएं दा क्या नाम है?
3: जमानाबाद पनियारखड़।
2: पनियारखड़ है
3: ना
2: जी। कन्ने ब्लॉक कौन पौंदा तुहां
3: दा? कांगड़ा।
2: कांगड़ा ब्लॉक।
3: हाँ जी।
2: अच्छा जी। सपना जी ता खेतीबाड़ी करदे है ना?
3: हाँ जी करदे।
2: जी किन्नी की जमीन है तो हवाल जिसे तो हाँ खेती कर दिया ना?
3: दो की करना हो। हाँ
2: अच्छा, सारी जमीन दो कनाल ही है?
3: हाँ जी दो
2: ही की है। खेती करने काबिल ही दो कनाल है बस?
3: खेती करने काबिल चढ़ा है दो।
2: अच्छा बाकी जी या खरातड़ वगैरह होनी है ना?
3: हाँ जी।
2: तो दो तीन कनाल से क्या क्या खेती कर दे दो?
3: जी या धान इस टाइम धान लगायो।
2: हाँ जी। सपना जी बी को तो लेंदे दो? हाँ चलो बी बन दे अंदा
3: बी यहाँ प्राइवेट ही लाने दुकान
2: ये तो कांगड़ा मिली जाते?
3: हाँ जी।
2: अच्छा यानी कि बढ़िया हाइब्रिड बीज बन दे ना?
3: हाँ जी।
2: अच्छा धान कदे निबे?
3: धान तो अच्छे निबे।
2: कौन बीज लगाया हा धान दा पता कुछ?
3: 834।
2: अच्छा देखा भी पहले भी मिंजो इसी एरिए चे जिया कुछ एक किसान मिले किसान भेणा ते ना सारे बोलिया कि अहां भी 834 लगाया, तो तुहां सारे सलाह तो नहीं कीती है कि 834 लगाना?
3: क्या कि ज्यादा
2: अच्छा
3: दिन दी फसल इस दा एवरेज अच्छी है।
2: सब्जियां दा जिक्र तुहां कीता, क्या क्या सब्जियां लगांदे?
3: सब्जियां तो जी है आजकल मौसमी लगियां, करेले होई लौकी होई।
2: हां जी।
3: फिर हल्के फुल्के बैंगन भी भिंडी।
2: हाँ जी।
3: ये सारियाँ सब्जी।
2: अच्छा
3: तोरियाँ हुई हैं फिर।
2: अच्छा अपने घर गुजारा ये कर दे कि थोड़ा बेची भी लाते जी?
3: जी हाँ बढ़िया तो बेची भी लाते।
2: अच्छा देखा भाई अगर अपने घर दे सवाड़ुआ दी साग सब्जी अगर अहाँ जो मिली आ कर दी है ना तो इससे बढ़िया गल जड़ा सा और क्या हो सकती? देखा जी अहाँ पिछे देखे तो बाजारा में सब्जियां दे क्या भाव है जेडे जितने महंगी ही है
3: ना?
2: चलो अगर अहाँ वाल अगर घर कोई चीज हो ना तो अहाँ जो कितनी खुशी होंगी कि हाँ अपने जड़े से अपने साग सवाड़ू तो जड़े से तोड़ी करके आंधी एक टोकरी भरी की है ना हरी भरी सब्जी। खादा कौन दी प्रयोग च लांदे तो? हाँ
3: खाद प्राकृतिक होंदी जी देसी।
2: अच्छा यानी कि बाकी यूरिया वगैरह नहीं पांदे?
3: यूरिया वगैरह नहीं बिल्कुल।
2: शुरू ते इया करदे कि पहले पांदे हे यूरिया?
3: बड़े पहले पांदे हे यूरिया ना।
2: हाँ जी।
3: फिर उसते साइड इफेक्ट होने लगे बीमारियां अंदर बारे च सुने कि बीमारियां होनी बड़ा दियां तो हां नेचुरली सोचे कि घर ही
2: यानी कि तो हाँ प्राकृतिक खेती करा करते ना।
3: हाँ जी।
2: सपना जी इदे अलावा गल करते हैं ना पशुधन दी तो क्या क्या पशु पाले तो? हाँ
3: कुकड़ियां पाले।
2: अच्छा मुर्गे पाले हो?
3: हाँ जी।
2: कितने साल हुई है मुर्गियां पाल दे?
3: कोई 8-9 साल।
2: अच्छा तो कौन मुर्गे ने देसी मुर्गियां ना?
3: हाँ जी देसी कने कड़कनाथ।
2: अच्छा कड़कनाथ ना।
3: हाँ जी।
2: तो इस साइया दिया ओड़ा वगैरह बनाया होना तो? हाँ
3: करे हाँ जी बनाया।
2: दिन छड़ी दे चुगना?
3: हाँ जी टाइम टू टाइम छड़ दे पूरा दिन नहीं छड़ दे।
2: अच्छा
3: छड़ देना जी ये बिल्लियां वाली अंदर भी लगता ना।
2: हाँ जी। किन्ने मुर्गियां ने रखी हैं?
3: 15 की हैं।
2: अच्छा अंडे देनी है?
3: हाँ जी
2: 15 देनी है
3: बीच कुछ नहीं भी देनी है।
2: अच्छा हाँ कई बार जो सा थोड़ा जी एक दिन का जी अंतराल आई
3: जाता है। हाँ अंतराल छे
2: दिन। तो जी दिखा देसी अंडे की तो बड़ी भारी बाजार में जी सा मांग है।
3: हाँ
2: जी। तो जी जड़ा ये इलाका है तो जो ग्रां है कहना दिखा इतना बड़ा जो शहर सोगी बसदा जी कांगड़ा बाजार है।
3: हाँ जी।
2: तो अंडे तो बिकी जाते होने ना?
3: अंडे बिकी जाते पहले ही मांग पहले ही डिमांड करी दे कि इतने अहें चाहिए होंगे।
2: अच्छा किन्ने रुपये अंडे बेच दे? एक
3: देसी जड़ा ने एक तिना तो 15 दिन देना।
2: हाँ जी
3: वैसे भी चले होना मार्केट च पर मैं 15 करके सेल कर दे।
2: अच्छा
3: कने एक जड़ा 25 रुपये जेड़ा कड़कनाथ जेड़ा पांच मुर्गियां पालियां ना तिना दा 25 रुपये सेल कर दे।
2: कड़कनाथ अंडा थोड़ा बड़ा होंदा ना?
3: हाँ जी बड़ा काली मुर्गी ना।
2: हाँ जी हाँ का देखा जेड़े कड़कनाथ जेड़े अंडे ने इन बिच बड़िया सारिया बीमारियां जो जेड़े सा दूर भगाने दे जेड़े सा इस बिच आयुर्वेदिक गुण हैं। कने देखा अंडे देसी जियां जी तुम बोलिया कि तुम वाल पहले ही जड़े से इसकी मांग आई जाती है कि
3: हाँ
2: जी इतने अंडे जड़े से चाहिए ने। मुर्गियां क्या क्या दाना पाते तो? हाँ
3: मुर्गियां तो एक तो हमारी जड़ा अपनी फसल जड़ा नेचुरल तैयार होती सही कने बाहर जड़ा चुगना भेजते।
2: अच्छा
3: हाँ जी सही।
2: अच्छा
3: डाइट
2: यानी कि कणक पाते

0: है ना,
1: हाँ जी कणक,
0: कणक छलियां हुई हैं।
1: हाँ जी जड़ा हंदी जड़ा फसल निकलती ना
0: हाँ जी।
1: दिन दे कणक छलियां छलियां।
0: अच्छा सपना जी कुतू ते ले है तो हां चूजे कुतू ले है मुर्गियां दे
1: ब्लॉक ते ले
0: है। तो कांगड़ा मिल ले है?
1: हाँ जी।
0: अच्छा इन फ्री मिल ले है कि पैसे ना?
1: पैसे देते।
0: अच्छा ये कि थोड़े होने दल ते ना
1: हाँ
0: देना को 15-20 रुपए चूजा होना ना?
1: हाँ जी तनु थोड़े देते।
0: 15 ही मिल ले है, ज्यादा नहीं ले?
1: ज्यादा तो बोला दे पर मैं ते उतना ही जितना आप
0: यानी कि जगह भी थोड़ी होनी ना ओढ़ने
1: है
0: ना
1: उसके थोड़ी।
0: इससे सोगी जी कोई और जी तो दसिया कि पशु तो तहां कोई भी नहीं पाले है ना?
1: नहीं नहीं
0: कर मुर्गियां रखी है ना?
1: हां जी
0: मुर्गी। जी हां जी। तो देखा ये भी एक आहा दी जड़ियां आहा दे जेड़े किसान भैन आन तिन दी एक जड़ी से अतिरिक्त जड़ी बोलदे ना आय दा स्रोत है कि तिन अपने जड़े से घरे दे कम में सोगी कई तरह दे ऐसे काम जी कोई सिलाई है कढ़ाई है अचार चटनी मुरब्बे बनाने दे काम है थी जी तो हां जड़ियां से मुर्गियां जड़ियां से रखी है ना?
1: हां जी मुर्गी।
0: जी तो दसिया कि तुहां प्राकृतिक खेती जियां करदे आं इते तुहां सिखलाई वगैरह लई ही कुथी?
1: सिखलाई तो नहीं लई ही पर जी
0: ग्रांच कैंप लगे,
1: ग्रांच कैंप लगे है ना उस्ते लिया हां फिर सीख।
0: अच्छा अच्छा जियां तुहां इसते सोगी अपनी जमीन विच कोई पौधे वगैरह भी लगाए जियां?
1: हां जी
0: अच्छा।
1: नींबू तो लगाए ना?
0: हां जी।
1: अमरूद
0: हां जी।
1: कने संतरे
0: यानी कि एक एक दो दो बूटे तो हाँ जड़े सारे लगाए हुए हैं।
1: हाँ जी हाँ।
0: तो हाँ तो जड़ा ये इलाका है तो पानी ये तो क्या साधन है सिंचाई की कर दे खेता दी?
1: सिंचाई तो कुल ला दे ये साधन।
0: अच्छा।
1: कुल खूब सारा पानी चल रहा है
0: तो कुदू ते उन्दी कुल ले
1: मटोर
0: काफी दूर ते उन्दी है ना?
1: हाँ जी मटोर
0: मतलब बढ़िया ना कुल्ला पकी है ना?
1: हाँ जी पक।
0: सपना जी हाँ जड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है तेना जो भी तो हाँ कोई क्या संदेश देना चाहेंगे तो हाँ कि सह भी कि अपने खेतीबाड़ी के कमे जो करके अपनी आमदनी जो बढ़ाई सकते हैं ना?
1: तीने मैं यही संदेश देना चाहती कि खेतीबाड़ी तो है इंपोर्टेंट है सारे वास्ते जरूरी है।
0: हाँ जी।
1: पर उसके साथ साथ भी अपना अलग कारोबार ढूंढना चाहन।
0: हाँ जी।
1: तो कोई अहे बाहर जाने जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल हाँ जी।
1: कहे कि यहाँ घर बैठे भी
0: हाँ
1: कोई ना कोई कारोबार कर सकते
0: जी। हाँ
1: मैं
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कारोबार लेडीज ही कर सकती।
0: हाँ जी।
1: जेंट्स भी कर बे करिए काम कर सकते
0: यानी कि हाँ जी।
1: कोई भी जिया हूं मैं तो मुर्गियां रखिया।
0: हाँ जी।
1: इसी साई कोई जिया बकरियां ज्यादा रखी सकते
0: हाँ
1: या
0: जी।
1: कुछ कुछ भी आए तो कुछ भी कर सकते कारोबार यानी
0: जी।
1: हाँ जी।
0: सपना जी बड़ा बांका संदेश तो हाँ जड़ा सा दिता है हाँ सुनने वाले तो हाँ अहाँ कन्ने गलबात की अपना कीमती समय तो हाँ अहाँ जो दिता तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद
2: जी। बड़ी छैले जानकारी थी ग्राम सेवक जी कने दिखा इन्हें जानकारी ते सीख ले के सांझो जड़ा अपना कोई भी व्यवसाय है जरूर बधाना चाहिए
3: जी।
2: हूँ अहाँ फिर चलना एक प्यारे जे लोक गीत की तरफ।

इस प्यारे दे लोक गीत दे बाद अहां चलना हुण मंडी भाव दी जानकारी दी तरफ। तां आलू अजरे 12 ते 14 रुपए प्रति किलो, प्याज 30 ते 33 रुपए प्रति किलो, टमाटर 36 ते 40, लसन 160 ते 170, अदरक 200 ते 210, शिमला मिर्च 50 ते 55, अरबी 28 ते 30, खीरा 25 ते 28, हरा मटर रहा 95 ते 100 रुपए प्रति किलो, फुलगोभी रही 60 ते 65 रुपए प्रति किलो, बंद गोभी रही 15 ते 20 रुपए प्रति किलो, बैंगन रे 20 ते 21 रुपए प्रति किलो, कद्दू रहा 15 ते 20 रुपए प्रति किलो, मूली रही 15 ते 25 रुपए प्रति किलो, टिंडे का भाव रहा 45 ते 50 रुपए प्रति किलो, पालक 32 ते 35 रुपए प्रति किलो, हरी मिर्च 28 ते 32, धनिया 130 ते 150, भिंडी 28 ते 30, घिया 25 ते 35, करेला 20 ते 25, फ्रासवीन 50 ते 55, गाजर 25 ते 30। अगर फलां दी गल कीती जाए तां सेब रहा 110 ते 170 रुपए प्रति किलो, केला रहा 50 ते 60 रुपए प्रति दर्जन, अनार 120 ते 140 रुपए प्रति किलो, अमरूद 70 ते 80, पपीता 40 ते 50, खरबूजा रहा 35 ते 40 रुपए प्रति किलो, पलम 50 ते 70, अंब 110 ते 140 रुपए प्रति किलो, अंब तोता जेड़ा रहा सैरिया 50 ते 60 रुपए प्रति किलो, अंब दुशहरी जेड़ा ऐसा 40 ते 55 रुपए प्रति किलो, नींबू 65 ते 70, करे नाशपती 110 ते 150 रुपए प्रति किलो रही। ये थे कांगड़ा सब्जी मंडी के थोक भाव। अगर मौसम की गल की जाए तो चंबा का अज अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सैलसीयस, कने न्यूनतम रहा 21 डिग्री सैलसीयस, कने धर्मशाला का अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री।

0: सेल्सियस कने न्यूनतम रहा 16 डिग्री सेल्सियस। कुल्लू का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम रहा 19 डिग्री सेल्सियस। कने सुंदरनगर का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम रहा 21 डिग्री सेल्सियस। कने ऊना का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम रहा 22 डिग्री सेल्सियस। कने शिमला का अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम रहा 17 डिग्री सेल्सियस।
1: जी कने पूर्वानुमान ये है कि भाई कल भी इसी तरह बदल छाए रहने कने कुथी कुथी जड़ा ऐसा बरखा भी हो सकती है तो अपना छतरी जड़ी ऐसा अपने कन्ने जरूर रखनी है।
0: जी बड़ी छैल गल है कि छतरी जड़ी ऐसा हाँ जरूर अपने कन्ने रखनी है क्योंकि बरसात जड़ी ऐसा आई चुकी है।
1: जी तो हुण चलदे चलदे सुनदे ने ये प्यारा त्या लोक गीत।
0: जी

कन्ने कार्यक्रम किसान वाणी का समय इत ही संपन्न हों जाने से पहले दसी दी है तकनीकी सहयोग विकास पठानिया का कन्ने प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह उन सांझे दोनों जुदिया अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जाए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का कल प्रस्तावित शिमला दौरा खराब मौसम के चलते रद्द। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनता की सोच को धरातल पर उतार रही है कांग्रेस सरकार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही सरकार, जुलाई अगस्त में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, अनुभवहीनता व गलत नीतियों के कारण सुक्खू सरकार ने हिमाचल को दो दशक पीछे धकेला। और मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा जारी, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन का कल प्रस्तावित शिमला दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया है। वे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आयोजित होने वाली वंदे मातरम की यात्रा पर स्थायी प्रदर्शनी और सरदार पटेल का विजन अखंडता, एकजुटता और संघवाद संगोष्ठी का अब वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार जनता की सोच को धरातल पर उतार रही है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना में अपने अधिकारों की मजबूती से पैरवी की, जिससे हिमाचल के हितों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से हिमाचल को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपये आय होगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में भाजपा सरकार होती तो किशाऊ बांध पर पुराने समझौते को स्वीकार कर लेती, जिससे प्रदेश को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, लेकिन कांग्रेस सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर एक भी आरोप नहीं है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। वे आज लोकभवन शिमला में उनसे मिलने आए एचएएस व संबद्ध सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने अधिकारियों को संविधान, कानून और जनहित के अनुसार निर्णय लेने की सलाह दी, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो सके। उन्होंने प्रशासन में आधुनिक तकनीक और ई गवर्नेंस से अधिक उपयोग पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। आज शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी अवैध खनन की शिकायतें आती हैं, वहां संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाती है। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि जुलाई व अगस्त माह तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
1: लीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश के जिस मर्जी कोने में होगी, सब एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस लीगल माइनिंग में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे सत्ता दल का कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें चाहे वो सिरमौर जिला है, चाहे सोलन जिला है, चाहे ऊना जिला है, चाहे नूरपुर जिला है, 2 महीने जुलाई और अगस्त में माइनिंग बंद कर दिया। सितंबर के महीने में जाकर के जो है अब माइनिंग खुलेगी।
0: ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक करीब 15 से 20% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ टेंडर प्रक्रियाएं शेष हैं, जिन्हें जल्द

0: वो कर दिए है, कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा है। अभी लैंड डेवलपमेंट का वर्क, ब्रिजेस है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो राउंड अबाउट 225 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिया गया है। लैंड डेवलपमेंट का अभी तो कोई राउंड अबाउट 15-20% काम हुआ है, और कुछ एरिया में जो ट्री फेलिंग है, ट्री पेड़ों को काटने की अनुमति फॉरेस्ट वन विभाग से है, उसकी रफ्तार धीमी है। और हमने बार बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि इसमें तेजी लाए, ताकि हमारा बर्ड रक पार्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है और स्टार्ट है वो टाइम के ऊपर हो सके।
1: नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने

के सरकारी स्कूल ओहर में आयोजित विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान राजेश धर्माणी ने विद्यालय के खेल मैदान व शौचालय के निर्माण व सुधार कार्य के लिए 55 लाख रुपए देने की घोषणा की। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे

के लिए 55 लाख रुपए देने की घोषणा की। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं।

0: भीषण बाढ़ से लिप्पा गांव को जोड़ने वाला पुल जलमग्न होने से आसपास कई घरों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है और लिप्पा गांव का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। जिले के कूपा गांव के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से पत्थर गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव के 13 लोगों को जीरा फार्म में सुरक्षित ठहराया है। उधर सिरमौर जिले में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं और बड़ी संख्या में बिजली ट्रांसफार्मर ठप्प होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित है।
1: सुबह से बारिश हो रही है और अभी की स्थिति में 34 रोड्स ऐसी हैं जिला सिरमौर में जो ब्लॉक्ड हैं, इसमें सबसे ज्यादा शिलाई में 21 हैं और अभी NH हमारे खुले हुए हैं सारे। 63 DTRs अफेक्टेड हैं या डैमेज्ड हैं, वो मोस्टली पौंटा साहब एरिया के हैं और वाटर सप्लाई डिस्टर्बेड 4 जगह पे है, वो मतलब नाहन में ही ये 4 जगह है। और लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि नदी नालों से दूर रहें और जैसे आप लोग एडवेंचर ट्रिप पहाड़ वहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो वो भी ना करें, अननेसेसरी भी ट्रैवल ना करें।
0: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश आशा वर्कर महामंत्री शशिलता के नेतृत्व में आज धर्मशाला में इन कार्यकर्ताओं ने स्थायी नीति बनाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 26,000 रुपये मानदेय देने और स्थायी कर्मचारी नीति के दायरे में लाने की मांग की।
2: हमारी मांगे हैं कि मानदेय की न्यूनतम राशि 26,000 दे, उसमें स्थायी नीति के दायरे में ले और हमारे से जो नेशनल प्रोग्राम वाले काम करवाए जाते हैं उनका समय पर भुगतान करें और प्रदेश सरकार से भी एक निवेदन है कि जो बजट सत्र में उन्होंने 1,000 की राशि की बढ़ोतरी की थी वो अभी तक हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर को नहीं मिली है। दुख का विषय है और चिंताजनक भी है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री महोदय जी ने आशा वर्कर को सम्मानित किया था लेकिन आज वही आशा वर्कर जो है सड़कों पर उतरी।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का कल प्रस्तावित शिमला दौरा खराब मौसम के चलते रद्द। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनता की सोच को धरातल पर उतार रही है कांग्रेस सरकार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही सरकार, जुलाई अगस्त में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, अनुभवहीनता व गलत नीतियों के कारण सुक्खू सरकार ने हिमाचल को 2 दशक पीछे धकेला। और मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा जारी, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब जिला ऊना से प्राप्त सूचना अनुसार कार्यालय अंब में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के खाली पदों भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीदवार सादे कागज पर अपना आवेदन दिनांक 10 जुलाई 2026 तक कार्यालय में जमा करवा सकता है। इन पदों को भरने हेतु वांछनीय योग्यताएं इस प्रकार से हैं। केवल वही महिला उम्मीदवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों हेतु आवेदन करने के लिए योग्य हैं जो संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र की सामान्य निवासी हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पदों को भरने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 जमा 2 निर्धारित की गई है।

0: उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उम्मीदवार के पास हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के पद भरे जाने हैं, आंगनवाड़ी केंद्र वदमाला, ज्वाल, बदायूं, अपर लोहारा, इन आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद भरे जाने हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सिद्ध चलहेड़, पिंजौर 2, बेहड़, वदमाला 2, कठलौड़ कलां 2, बीजापुर, बाजीगर मोहल्ला, टकोली, शिवपुर, हीरानगर, दियाड़ा 2, बेहड़ी, इन आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी सहायकों के पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु 15 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। आपको पुनः बता दें, इन पदों को भरने हेतु महिला उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अम्ब जिला ऊना से। इसी के साथ रोजगार समाचार अब समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारे
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीदवार सादे कागज पर अपना आवेदन दिनांक 10 जुलाई 2026 तक कार्यालय में जमा करवा सकता है। इन पदों को भरने हेतु वांछनीय योग्यताएं इस प्रकार से हैं। केवल वही महिला उम्मीदवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों हेतु आवेदन करने के लिए योग्य हैं जो संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र की सामान्य निवासी हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पदों को भरने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10:2 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उम्मीदवार के पास हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के पद भरे जाने हैं, आंगनवाड़ी केंद्र वदमाला, ज्वाल, बदायू, अपर लोहारा, इन आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद भरे जाने हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सिद्ध चलहेड़, पिंजौर 2, बेहड़, वदमाला 2, कठलौड़ कलां 2, बीजापुर, बाजीगर मोहल्ला, टकोली, शिवपुर, हीरानगर, दियाड़ा 2, बेहड़ी, इन आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी सहायकों के पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु 15 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। आपको पुनः बता दें, इन पदों को भरने हेतु महिला उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अम्ब जिला ऊना से। इसी के साथ रोजगार समाचार अब समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारे
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं ये पंजाबी गीत हरजीत हरमन की आवाज़ में।

श्रोता कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले ये कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोता, इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को सुबह 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा डिजिटल आई स्ट्रेन, और इससे संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर संदीप महाजन नेत्र रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। और आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 और समय है सुबह 9 से 10 बजे तक। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 01 892 2243 91। और फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 01892 2243 91। तो फ़ोन करना ना भूलें, रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 और सुबह 9 से 10 बजे तक FM 103.4 MHz पर, और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में गाई ये गज़ल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया।

0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड

0: में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
1: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि

0: नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans,

0: over Uttarakhand tomorrow. The weather agency has predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, East Madhya Pradesh and Madhya Maharashtra over the next 4 days. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain today. In FIFA World Cup, France will face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. The match will begin at 1:30 a.m. Indian time. Spain will take on Belgium in the second quarterfinal match tomorrow late night. In the remaining quarterfinal matches, Norway will play against England while defending champions Argentina will clash with Switzerland on Sunday morning. In Wimbledon tennis, Carolina Mukova of Czech Republic has reached women's singles final. 10th seed Mukova defeated 7th seed American player Coco Gauff in the first semi-final of the women's singles this evening. Later in the second semi-final, Ukraine's Marta Kotsyuk will take on Czech player Linda Noskova. And in men's cricket, India will face England in the 4T20 International of the 5-match series at the County Ground in Bristol tonight. The match will begin at 10 p.m. Indian Standard Time. The Indian team trailed the series 0-2, making this a must-win game to stay alive. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of the world's top three economies driven by the motto of Grow More, Achieve More, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar, and in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक ही कलाकार। श्रोता, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री नीतू सिंह के बारे में। जी दोस्तों, नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को हुआ था और उन्होंने 1960 और 70 के दशक में बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत की थी। नीतू सिंह का जन्म दिल्ली के पंत नगर में एक जाट सिख परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम दर्शन सिंह और माता का नाम राज सिंह था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मात्र 8 वर्ष की उम्र में की थी और बेबी सोनिया के नाम से उन्हें 10 लाख फिल्म जो थी वो वर्ष 1966 में और वर्ष 1968 में आई फिल्म दो कली जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया था। और ये भी कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था। तो आइए सुनवाते हैं आपको उन्हीं पर फिल्माया हुआ एक गीत।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

जी श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह की। तो उनके करियर की अगर बात की जाए तो बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म रिक्शा वाला थी, जो वर्ष 1973 में आई थी। और उन्होंने 70 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें से दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर और याराना जो थी वो प्रमुख फिल्में थी। और नीतू सिंह ने 22 जनवरी 1980 को अपने समय के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के साथ शादी कर ली, और शादी के बाद वो परिवार को समय देने के लिए फिल्मों से दूर हो गई थी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, और उन्होंने लंबे ब्रेक के बाद वर्ष 2009 की फिल्म लव आजकल से शानदार वापसी भी की थी, और इसके बाद वो दो दुनी चार जो फिल्म थी वो वर्ष 2010 में, और जब तक है जान फिल्म वर्ष 2012, और फिल्म बेशर्म वर्ष 2013 में जो थी इन फिल्मों में नज़र आईं। और उन्हें 2012 में मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड में वॉक ऑफ द स्टार्स से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए सुनते हैं एक और गीत नीतू सिंह पर फिल्माया हुआ।

0: श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।
1: होठों की ठंडी आग में जलने का मौसम।
0: आप सुन रही थी कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंगे गजल। कार्यक्रम रंगे गजल में सभी श्रोताओं का स्वागत। और श्रोताओं, आज की शाम कोई आम शाम नहीं है, और आज की शाम है सुरों के नाम, जज्बातों के नाम और लफ्ज़ों के जादू के नाम, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सिलसिला रंगे गजल का, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी और नॉन फिल्मी गज़लें। और श्रोताओ, आप सभी ये जानते हैं कि गज़ल जो है सिर्फ उसे गाया या सुना नहीं जाता, गज़ल को महसूस किया जाता है। ये दिल से निकलकर सीधा दिल तक पहुंचती है। तो अपने धड़कनों को थाम लीजिए। और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज़ में गाई ये गज़ल।

दिलों को जोड़ने का हुनर सिखाती है गजल। आइए सुनते हैं कि आज क्या सुनाती है गजल। तो लीजिए सुनते हैं जगजीत सिंह की मखमली आवाज में ये गजल।

जी हाँ श्रोताओं, जिसने गज़ल को महफिलों से निकाल कर हर आम इंसान के घर और दिल तक पहुंचा दिया, एक ऐसी आवाज़ जिसमें रेशम जैसी मखमली कशिश भी है और दिल को छू लेने वाला दर्द भी। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की मखमली आवाज़ में ये गज़ल। कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोता, जब बात गज़ल की हो तो उसमें तो जहन में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, और वो फ़नकार जिनकी गायकी में समंदर सी गहराई और सुरों का ऐसा संसार है कि सुनने वाला बस झूम उठता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब के बारे में, और आइए सुनवाते हैं आपको इन्हीं की आवाज़ में एक गज़ल फिल्म निकाह से।

जिंदगी की किताब में हर रंग जरूरी है, कुछ अधूरे ख्वाब तो कुछ ख्वाहिशें पूरी हैं। काले सफेद पन्नों पर भी रंग बिखर जाते हैं जब अपनों की यादों के लम्हे संभर जाते हैं। आइए सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में ये गजल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंगे गजल, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली गीत और लोकगीत।

मंजू चिश्ती और साथियों की आवाज़ों में आपने ये लोकगीत सुना। अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं शेर सिंह जरियाल की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे वर्षा कटोच की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज़ में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीत व लोकगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सभी श्रोताओं का स्वागत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में, और फिल्म है हिमालय की गोद में।

चांद मुस्काया, सितारे शर्माए।

0: वाले जा, जरा मुस्कुरा के जा, ओ जरा मुस्कुरा, जरा मुस्कुरा के जा।
1: मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजार में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और आशा।

0: सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी।
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में

0: पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of grow more, achieve more." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said, "The operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations." Mr. Modi said, "The India-Australia partnership has reached new heights, driven by shared values, strong people-to-people ties, and expanding cooperation across key sectors." He described the 1 million strong Indian diaspora as a vital pillar of bilateral relations. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese described the Indian community as a living bridge between the two countries. Union Home Minister Amit Shah stated that a secure border, a prosperous border region, and a vigilant society together can make the country secure. The Home Minister said this while addressing a conference of superintendents of police, that is SPs, from border districts in New Delhi today. Mr. Shah said, "The government is creating a robust system to make the country completely infiltration-free." He noted that the Narendra Modi-led government has scientifically increased border infrastructure by 400%. Referring to the Vibrant Villages program, the Home Minister said that under the initiative, efforts are being made to prevent migration, create jobs, and ensure 100% implementation of government welfare.